0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

सुप्रभात। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज

गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से

0: जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में हर रोज की तरह पहले आपको सुनवाते हैं समूह स्वर में ये मातृवंदना। गीत और संगीत है डॉक्टर ललित मोहन का।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। गीत और संगीत था डॉक्टर ललित मोहन का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये नात समूह स्वर में। रचना है जफर की।

अभी आप सुन रहे थे ये नात समूह स्वर में, रचना थी जफर की। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं संत मीराबाई की रचना। संगीत है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का, आवाज है लता मंगेशकर की।

संत मीराबाई की रचना अभी आपने सुनी। संगीत था पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का, आवाज थी लता मंगेशकर की। और आइए अर्चना कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं संत कबीरदास जी की रचना स्वर सुमना राय का।

अभी आप सुन रहे थे संत कबीरदास जी की रचना स्वर था सुमना राय का। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होंगे पंडित जसराज और साथियों के। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 से। इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा जैविक कीट नियंत्रण और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 7:10 से। मनचाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:45 से। सुबह 8 का वक्त होगा समाचार प्रभात का, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से। सुबह 8:30 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 9 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 से, इसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फोन करें लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा सुबह 10:05 से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय होगा सुबह 11 का। सुबह 11:30 से एक बार फिर से आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। दोपहर 2 फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से दोपहर 2:10 पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। दोपहर समाचार का वक्त होगा दोपहर 2:15 का। इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5 से, इसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:02 से, इसे भी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 5:30 से। शाम 6 से सुनिएगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। शाम 6:15 पर सुनिएगा वार्ता, विषय होगा आकाशवाणी 9 से गूंजती भारत की आवाज। वार्ताकार होंगे सलोनी शर्मा, शोधार्थी UTD सागर। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। लोक रंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:45 से। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 से, इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 7:10 से। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी होगा शाम 7:30 से, माफ कीजिएगा 20 से। आज का खास क्रम होगा हेलो किसान वाणी। रात्रि 8 का समय होगा चित्रपट संगीत का। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 से। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा भेंट वार्ता, विषय होगा माहवारी स्वच्छता दिवस और विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर स्मिता दुबे, स्त्री रोग विशेषज्ञ।
और भेंटकर्ता होंगे जय शेखर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीत सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे से होंगे। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 से। ये दोनों ही समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की इस सभा का समापन होगा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर पंडित जसराज और साथियों के हैं। सुनते हैं आज इसका पहला भाग।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

रामचरित मानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे पंडित जसराज और साथी। आज आप सुन रहे थे इसका पहला भाग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं साहिर के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है एसटी बर्मन का, आवाज़ें किशोर कुमार और गीता दत्त की। फिल्म का नाम जाल।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी का लिखा हुआ, संगीत है नौशाद का, इसे गाया है तलत महमूद और शमशाद बेगम ने। फिल्म का नाम है बाबुल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
4: संदेश के बाद कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं वापस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मंडल आरक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परंपरायाः

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बज चुके हैं। पेश है कार्यक्रम सुबह सुबह। सभी सुनने वालों को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने में समेटे हमारे देश की संस्कृति में जितनी विविधता है उतनी कहीं और नहीं, और विविधता में एकता का भाव जैसे सोने में सुहागा। बार बार हमें एकता के सूत्र में पिरोते और आपसी भाईचारे की अलख जगाते उत्सव और त्यौहार, और हर तीज त्यौहार के मूल में आपसी रिश्तों में भावनात्मक मजबूती और मिठास की महक का प्रसार है जो हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों को समझाता है। सबको साथ लेकर मिलजुल कर रहने और सबके सुख दुख को साझा करते सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन के यथार्थ संघर्ष के बीच अध्यात्म की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है हमें बार बार याद दिलाता है, ताकि इस मोह माया से भरी दुनिया में बार बार सतर्कता के साथ भूल से भी भूल ना कर बैठें और जीवन के असल मर्म को समझें। श्रोताओं, आज ईद उल अजहा का त्यौहार है। ये त्यौहार भी मुख्य रूप से त्याग, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है और जरूरतमंद लोगों की मदद करने और कुर्बानी के महत्व को रेखांकित करता है। कुल मिलाकर त्यौहार कोई भी हो, लोगों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता और उसके संरक्षण के विकास को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे की परंपराओं को सम्मान देना सिखाते हैं, प्रेम और सौहार्द के साथ जीना सिखाते हैं, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवंत बनी रहे। ईद की बहुत मुबारकबाद।

0: सुबह सुबह कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है जैविक कीट नियंत्रण और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी।
1: सामान्य तौर पे किसान भाई जब भी उनके खेतों में किसी प्रकार के रोग होते हैं या कीड़े होते हैं, उनके लिए रासायनिक जो कीटनाशी हैं या फफूंदनाशी हैं, इनका उपयोग करते हैं। जब हम लगातार इनका उपयोग करते रहते हैं या एक ही प्रकार के कीटनाशी का या एक ही प्रकार के फफूंदनाशी का बार बार उपयोग करते हैं, तो इससे कीड़ों में या जो भी बीमारियां हैं उनमें एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो बीमारियों के रोगाणु हैं उनमें और जो कीट व्याधियां हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास होती है। जैसे हम देखें कि पहले हमारे यहाँ चने में फूंदी जनित रोग उकटा जो लगता था, जो फ्यूजेरियम से होता, फ्यूजेरियम के बजाय जो दूसरा उकटा लगने लगा है वो राइजोक्टोनिया से लगने लगा। इसी प्रकार से पहले जो कई प्रकार के कीड़े, जैसे सफेद मक्की है या अन्य जो कीड़े हैं, जैसे आपका मिलीबग है, मिलीबग का प्रकोप पहले आम में या बहुत कम होता था, अब कई प्रकार के पौधों में सफेद सफेद रंग का रस चूसा कीट लगता है। तो ये बार बार जब हम एक ही प्रकार के कीटनाशियों का उपयोग करते हैं तो उससे कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और फिर वो उन कीटनाशियों से नष्ट नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में हमें जो जैविक नियंत्रण के उपाय हैं या जो कृषिगत नियंत्रण के उपाय हैं, अगर वो हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें कम लागत में, कम परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ होता है और जो भी हमारा उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो रसायनों से मुक्त होता है। तो इसलिए जो है जैविक नियंत्रण की जो विधियाँ हैं, किसान भाइयों को पूरे वर्ष की प्लानिंग करके शुरुआत से ही इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे हो सकता कि कीड़ों की या जो बीमारी की जो अवस्था है वो क्रांतिक अवस्था, जो नुकसान की अवस्था है, उससे नीचे रहेगी, तो हो सकता उनको रसायनों के उपयोग का मौका ही ना आए कि रसायनों का उपयोग करना। जैविक नियंत्रण से तात्पर्य है कि प्रकृति में मौजूद जो भी वनस्पति हैं या जो भी जीव हैं उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनसे हम कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण करें। जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत सारे फफूंद या जीवाणु जनित उत्पादों को बनाया गया है जो नियंत्रण में, कीट नियंत्रण में बहुत ज्यादा कारगर है। इसी प्रकार से कीट नियंत्रण में भी कुछ पौधों से प्राप्त उत्पाद हैं, कुछ जीवाणु प्रकृति के हैं, कुछ फफूंदी प्रकृति के हैं और कुछ पूरे के पूरे पौधे के भाग ही हैं जिनका छिड़काव करके, जिनका उपयोग करके हम कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि रसायनों के बिना उपयोग के हम कीट व्याधियों को नियंत्रित करते हैं वो जैविक कीट व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत। ज्यादातर जो पौधों की बीमारियां हैं वो या तो मृदा जनित होती हैं, मिट्टी में फफूंद रहते हैं, और या बीज के माध्यम से रोगाणु पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो जो बीज जनित बीमारियां हैं, जो बीज के माध्यम से होती हैं या जो मिट्टी के माध्यम से होने वाली बीमारियां हैं, खासतौर से फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, पीथियम, स्क्लेरोशियम, ये बहुत सारे जो फफूंद है वो जमीन में रहते हैं या बहुत सारे जीवाणु जो है वो जमीन में रहते हैं और जब हम फसल को बोते हैं तो उस पर वो उन रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे गेहूं का कंडवा, ये कंडवा बीमारी बालियों में दिखाई देती है लेकिन ये मूल रूप से बीज और जमीन के माध्यम से पौधों में पहुंचती है। उकटा के जो रोगाणु है वो जमीन में रहते हैं, जब पौधे की बोनी, पौधा जमता है तब जाके ये फूल आने की अवस्था पे बीमारी आती है। अदरक में लगने वाली बीमारी है, राइजोम रॉट है, या अरबी में लगने वाला फाइटोप्थोरा है, या अरहर में या तिल में लगने वाला फाइटोप्थोरा बीमारी, ये सब बीमारियां जमीन के माध्यम से होती। तो जमीन में रहने वाले जो फफूंद है उनके लिए जो जैविक फफूंदनाशी है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या स्यूडोमोनास या ग्लोमस स्पीसीज, इनके जो दवा जैविक फफूंदनाशी मिलती है इनका हम बीज उपचार के रूप में 5 ग्राम से 10 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बीज का उपचार करें। सब्जियों में अगर समस्या आती है तो सब्जियों की जिनकी नर्सरी तैयार की जाती है, जिनके पौध तैयार की जाती है, पौधशाला में ही हम 10-12 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला के जितनी भी अपनी पौधशाला है उसमें ज्यादा मात्रा में हम उत्काल के पौधशाला ट्राइकोडर्मा को या स्यूडोमोनास को डाल सकते हैं। जो बड़े खेत है, जैसे चने का खेत है, अदरक का खेत है, अरहर की फसल है, दलहनी फसल है जहाँ पे खासतौर से लेते हैं, वहां पे उकटा की जो समस्या है या आलू में लगने

0: वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए है, तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 किलोग्राम स्यूडोमोनास को हम 1 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद में मिला के गीला करके उसको 10-12 दिनों के लिए रख दें, और इसके बाद जब खेत में नमी हो तो शाम के समय उसको खेत में बिखेर के और बखन्नी करके उसको जमीन में मिला दें। तो ये ट्राइकोडर्मा जमीन में बहुत तीव्र गति से फैलता है, और तीव्र गति से फैलने की वजह से दूसरे फफूंद उस खेत में पनप नहीं पाते, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता।
1: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, विषय था जैविक कीट नियंत्रण और विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। क्विशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे, बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जाँच नहीं की। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वही ट्विशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार

0: रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलतास, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। IPL एनिमेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में RCB से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है।

खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कट्टी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित। और शहडोल में साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम की पहली पेशकश कुर्बानी फिल्म से है। आवाज़ें किशोर कुमार अनवर और अजीज नासा की हैं, बोल हैं दीवर के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में मिली गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। दतरेंगी से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली भागवत वर्मा, रुद्र वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता की। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये फरमाइश है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा की। और कोल सिटी बर काकाना से ये व्हाट्सएप फरमाइश है अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना और सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: इस समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में फिर से स्वागत है सभी सुनने वालों का। और इस कार्यक्रम में अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं शैलेंद्र के, संगीत है एस टी बर्मन का, फिल्म का नाम है गाइड और फरमाइश है आप सभी की। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से ये व्हाट्सएप फरमाइश है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओवी, सुभाष, सदानंद, नीरज, विराज और उनके तमाम साथियों की। रघुवीर नगर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू की। पलारी छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश है नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन की। डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर की। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं गाइड फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU,

0: एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: संदेश के बाद मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत सभी सुनने वालों का। और अब कार्यक्रम में आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं गीत। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली रज्जाक मोहम्मद, सामिम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और उनके तमाम साथियों की। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलूट जिला रतलाम एमपी मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की। रमाबाई कॉलोनी घाटकोपर मुंबई से ये व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी है वैभव चौहान, आभीर चौहान, भीमराव चौहान और सुजाता चौहान ने। और ये फरमाइश है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से। पत्र भेजा है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, अनक्ष और आरू साहू ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं दो रास्ते फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं शागिर्द फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है लक्ष्मीकांत पैरेलाल का और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। ये पत्र भेजा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू की। वारणा शाहपुर जिला कोल्हापुर से ये व्हाट्सएप फरमाइश है विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान और अनिकेत चौहान की। कल्याण मुंबई से डॉक्टर सूरज सुरवे, नमिता सुरवे और प्रकाश सुरवे ने ये फरमाइश लिख भेजी है। और बड़गांव पुणे से ये व्हाट्सएप फरमाइश है विजय कांबले, बेबी शौर्या, श्रेयस कांबले और अंकिता कांबले की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम के अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम शागिर्द और आवाज लता मंगेशकर की।

ஐயா.

इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब वक्त है कार्यक्रम संगीत सरिता का, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के साथ, स्वर और संगीत शंकर महादेवन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त एक सूचना, दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक और उनके परिजन इस सम्मेलन में

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम संगीत सरिता के आखिर में आपको सुनवाते हैं शान की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत, उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ एल्बम है भूल जा।

0: शाम के गए इस गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
6: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
7: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
8: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
4: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
6: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
9: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल।
4: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
10: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू

0: स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस दादरा से। कलाकार हैं सोनी कक्कड़ और उनके साथी।

0: आर बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: संदेश के बाद लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवा रहे हैं ये चेतावनी। कलाकार हैं अमर सिंह यादव।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है लोक संगीत के कार्यक्रम में। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त एक सूचना। दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक और उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए लोक संगीत के कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं ये लोक भजन। कलाकार हैं बद्री प्रसाद कुटेलिया।

0: लोक गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण

मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके वृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर

देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय

अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाकराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया, क्योंकि हड़ताल तोड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

चढ़ भाग्य पर इठलाओ, चढ़ भाग्य पर इठलाओ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धोजीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना, विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यसेर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मुदस्सर अजीज और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगर।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और शालमली खोलगड़े की आवाजों में समीर अंजान का लिखा हुआ और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम एक्शन जैक्सन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कर की आवाजें, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज।
4: Where I want to be, where I need to go, boy, you know that I know how to get.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को

जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ न

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

लीजिए सुनिए गुना जिले की चिट्ठी। आलेख है रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर नवनीत चौबे की।

गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना और

0: रोजगार से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21,30,00,000 रुपए से ज्यादा के हित लाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कूनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कूनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपालें लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं, जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1,382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2,800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे की। ये
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं, फोन करें, लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: भैया आपनों की पसंद को कार्यक्रम जिनको नाम है फोन करें लोकगीत सुने एक बार फिर से हमारे लेके आपनों की सेवा में आ गए हैं। आज एक कार्यक्रम में अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से बातचीत करवे हम हैं सतीश साहू और अब देरी नहीं करत हैं, सुनत हैं कि आज के पहले श्रोता को हैं और का उनकी फरमाइश है। हेलो
1: हेलो
0: हाँ भैया आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
1: जी सर
0: आप अपना नाम बताओ भैया।
1: हम रोहित पटेल बोल रहे घूगर जमुनिया।
0: रोहित पटेल घूगर जमुनिया।
1: जी सर
0: घूगर जमुनिया कहाँ है भैया?
1: जहाँ है बालाजी से अपन जो रजबगढ़ रोड आते हैं।
0: हाउ
1: ये तो पड़ा था घूगर आमेट अर्जनी के ऊपर।
0: आमेट अर्जनी के ऊपर। चलो चलो बहुत अच्छी बात है भैया। कितना बड़ा गाँव है आपको?
1: बड़ो है सर कम से कम 900 वोट की बस्ती है।
0: 900 वोट की बस्ती है तो आबादी तो और ज्यादा कहानी है ना। स्कूल कहाँ तक है भैया?
1: आठवीं तक है।
0: आठवीं तक और फिर आठवीं के बाद
1: घूगर में दसवीं नौवीं से दसवीं तक।
0: अच्छा रोहित भाई आंगनवाड़ी केंद्र भी हुई है आपके इतने?
1: है भी सर।
0: और अस्पताल?
1: अस्पताल नहीं है।
0: चलो भैया फिर जैसे कौन लोग मन से लू बीमार हो जात तो भैया फिर कहाँ घूगर जात हो?
1: घूगर में है डॉक्टर लोग से वो तो चले जाते जब ज्यादा फिर गया से रिश्ते सागर जात।
0: सागर जात चलो भैया ठीक है। और अबे जोन हिसाब को मौसम चल रहा है
1: गर्मी को चल रहा सर
0: बहुत गर्मी पड़ रही भैया बहुत ही तेज दो चार दिना से तो ऐसी पड़ रही है। तो हम जो जानो चाह रहे थे कि पानी की क्या व्यवस्था है आपके गांव में?
1: पानी की अच्छी व्यवस्था है सर हमारे तो कमी नहीं है पानी की।
0: अरे वाह भैया आपने ऐसी कह दी सो इतने लो एक मतलब ठंडक आ गई हमारे करेजे में।
1: पानी की तो हमारे गाँव में कमी नहीं है।
0: कैसे भैया गांव गांव हमने देखो है कछु गांव में ऐसे बेचारे बाल बच्चे हैं और अपनी बिन्ना बेटी यहाँ रहे हैं जी और ढोत हैं गर्मियों में घाम में है ना।
1: अबे तालाब भरो है हमारे देखो।
0: वाह भैया बहुत अच्छी बात है। तो जब इतनी गर्मी में भरो है भैया तो फिर तो खाली होवे को प्रश्न ही नहीं उठा थे ना।
1: चल रही है।
0: चलो भैया तो बहुत बधाई की आपको गाँव इतना जल संपन्न है। और रोहित भाई
1: जी सर
0: अटका लेके आए हैं?
1: जी सर।
0: अटक जे हो के बता दे हो।
1: अब संकेत से अटक है तो फिर संकेत में ले हैं।
0: खेती किसानी है आपकी?
1: हाँ।
0: हाँ तो बस खेती किसानी से संबंधित है आप बता दे हो।
1: जी सर।
0: देखो हमने संकेत पहले ही दे दो।
1: हाँ।
0: आंगे आंगे बेने आई।
1: आंगे आंगे बेने आई।
0: पाछे पाछे भैया।
1: हाँ।
0: और दांत निकारे दादा आ गए चुनरी ओढ़े मैया।
1: चुनरी ओढ़े मैया।
0: हाँ।
1: खेती किसानी से है।
0: खेती किसानी से है भैया पूरा परिवार आ गो बताओ का है खेती किसानी को ऐसा
1: माने खावे की वो में है कैसा रहे उसी।
0: खेती किसानी से संबंध है तो फसल हुई है कौन फसल खावे पीवे की चीज रहे भैया?
1: गेहूं तो नहीं।
0: नहीं चलो आपने अंदाज तो लगाओ है। चलो कोई बात नहीं आप कार्यक्रम सुनो आपको पतो पर है।
1: जी सर।
0: और अब बता दो रोहित भाई फरमाइश।
1: स्वतंत्र राजपूत को सुनवा दी।
0: चलो कौन सा सुनवा दे भैया उनको? चलो ठीक है तो ले आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं भैया आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला राजपूत और उनकी सखियों को गाओ जो लोक शैली बद्ध गीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें, लोकगीत सुने।
2: सर, ललितपुर से बोल रहे, डोंगरा कला से।
1: डोंगरा कला
2: जी,
1: उत्तर प्रदेश
2: ललितपुर के पास है,
1: जिला ललितपुर लगत हुई है ना?
2: जी जी सर।
1: ललितपुर से कौन
2: से ट्राई कर रहे थे सर?
1: तो आज पहली बार लगो का आपको फोन?
2: जी सर, बहुत दिन से सुन रहे हम, कम से कम 18 साल हो गए।
1: अरे वाह भैया वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपको। ऐसे पुराने श्रोता जो उनको पहली बार फोन लगा था, मिलके बड़ी प्रसन्नता हो, उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा था।
2: जी सर।
1: शुभ नाम बताओ भैया आप अपनो।
2: जयराम पाल जी।
1: तो जयराम जी।
2: जी सर।
1: जयराम जी।
2: जी सर।
1: चलो भैया जयराम जी, हम जा पूछ रहे हैं कि डोंगरा कला कितनो बड़ो गांव है, कितनी आबादी हुई है भैया?
2: 6-7-8 हजार की लगभग की वो होगी वोटिंग।
1: चलो चलो भैया, तो वोटिंग अगर 6-7 हजार की है तो वो तो और ज्यादा कहाओ आबादी है ना?
2: जी सर।
1: तो करत कहो जयराम पाल जी आप?
2: करते कुछ नहीं है सर, अपनी बकरी चलाते हैं।
1: अच्छा, बकरी पालन। बकरी पालन पता नहीं भैया, हमें बहुत अच्छो धंधो लगत है। चरावे कहाँ ले जात, घरे ही बांध के चरात हो के कहूँ ले जात हो?
2: नहीं सर, अभी तो जैसे हाल खुले हैं, फिर जंगल में ले जाते हैं बसकारी में तो।
1: चलो ठीक है भैया, तो संभाल के कैसे बसकारी में कीड़ा पतिंदों को भी डर रहे थे और ज्यादा हरियाई खा ले अगर तो बीमारी को भी डर रहे थे पशुओं में, है ना?
2: जी सर।
1: और दूध कितनों पड़त भैया?
2: अब कुछ बोल नहीं पा रहे सर, क्योंकि ज्यादा खुशी हो रही ना, बहुत दिन से चलाई कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था।
1: और रामधे भैया उतना ही खुशी हमें हो रही, और इतने हड़बड़ावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से आप बात करो, बिल्कुल घर घाई है ना
2: जी,
1: कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपसे मिलके हमें कितनी खुशी हो रही, हम अनुमान नहीं बता सकते आपको। और जयराम जी, अपन बात कर रहे थे छिरियों की है ना, बकरियों की
2: जी,
1: तो
2: जी।
1: कुल दूध कितनों निकलत है आपके इतने जितने भी नग हैं?
2: अब दूध तो यही निकलता है, बच्चे भी उनके पीते हैं और अपन भी थोड़े बहुत निकाल लेते हैं, ज्यादा कुछ निकलता है।
1: अच्छा, फिर वो दूध को घर ही उपयोग करत भैया के कहूँ बेच भी करत हो?
2: नहीं, व्यक्ति व्यक्ति नहीं है सर, वो तो घर ही पे करते हैं उपयोग।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, तो भैया आप अच्छी नस्ल की बकरियां रखो और अच्छे जुट के करो भैया, तो आपको बकरी पालन जो है सफल हुई है, आगे बढ़ाओ आप एक हो। और आप 18 साल से सुन रहे भैया, तो जाना थी एक अटका लेके आउ थे।
2: जी जी, मालूम है सर, सब सुनते हैं, किसान वानी हर वो सुनते हैं प्रोग्राम।
1: अच्छा, किसानी भी है का आपकी?
2: हाँ, किसानी तो है अपनी।
1: कितनी है भैया?
2: अब अपनी कमी है 2-3 एकड़।
1: हाँ, 2-3 एकड़ कम नहीं कहा भैया, बहुत है अगर अच्छे से अपन करें तो।
2: हाँ जी।
1: तो चलो जयराम जी, अब आते हैं अटका पे
2: जी।
1: आज को अटका लेके आए हैं कि आंगे आंगे बेने आई, पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए, चुनरी ओढ़े मैया।
2: सर, इसमें कोई संकेत?
1: संकेत

0: बिल्कुल भैया, संकेत है खेती बाड़ी की चीज आए, और आप खेती बाड़ी करत हो तो आप को बताओ चाहिए हमारे ख्याल से।
1: मन तो नहीं रहा सारा, लेकिन क्या करें।
0: एक बार फिर से सुनो आप, माने पूरा परिवार जो है सो आ गओ, आंगे आंगे बेने आई, पाछे पाछे मैया, और दांत निकारे दादा आ गए, चुनरी ओढ़े मैया।
1: वो तो नहीं बनना।
0: चलो कोई दिक्कत नहीं जयराम जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बतावो कोई आवश्यक नहीं रहे थे। उद्देश्य जो रहे थे कि अब जैसे आपको नहीं मालूम, अब आप कार्यक्रम सुनो तो आपको एक नए अटका की जानकारी हो जाए, जानकारी बढ़ावो, एक उद्देश्य रहे थे, है ना, अपनी जो बुंदेली संस्कृति है, बुंदेली के अटका है, उनको बढ़ावो रहे थे। चलो अब बता दो आप अपनी फरमाइश।
1: सरदारी पटेल को सुना दी और लाल सुनारिया की कार खोरी।
0: ठीक है भैया, ले आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है जयराम भाई। हम आपको सुनवा रहे हैं राजू पटेल और उनके संगी साथियों को गाओ जलो गीत।
2: अरे लाल चुनरिया की कोरकारी,
3: तो हम का करें भैया।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और पुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: हेलो।
1: हेलो सर, फोन करें लोकगीत सुने।
0: बिल्कुल भैया, फोन करें लोकगीत सुने और केंद्र को नाम भी बताओ।
1: ये आकाशवाणी सागर।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने। और भैया अब आप अपना नाम बताओ।
1: हम बोले दशरथ अहरवाल, जिला दमोह, ग्राम बनवार से।
0: दशरथ अहरवार,
1: ग्राम बनवार, जिला दमोह से।
0: ग्राम बनवार दमोह,
1: जिला दमोह।
0: अब भैया एक निवेदन है आपसे।
1: जी
0: कि जब भी फोन करत हो तनक हल्ला गुल्ला से दूर रह के करो करे भैया।
1: हाँ सर, कूलर मूलर चल रहा ना, गर्मी की वजह से तो आवाज आ रही।
0: नहीं और तो बातचीत की भी आवाज आ रही भैया।
1: नहीं, बातचीत नहीं आ रही।
0: चलो तो थोड़े से अबे हाल हट जाओ भैया कूलर से।
1: जी
0: हालांकि गर्मी ज्यादा है, हम कूलर से हटवे की करे, लेकिन काहे आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। दशरथ भाई एक पहले कभी लगो तो आपको फोन?
1: पहली बार ही लगाओ। अच्छा।
0: चलो ठीक है भैया, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है भैया। नए श्रोता आज ज्यादा आ रहे हैं। दशरथ भाई बनवार आपके गांव को बड़ो अच्छो नाम है, तो होते जंगल है का आसपास वन है का?
1: नहीं नहीं, वन वन तो नहीं है।
0: अच्छा,
1: नाम ही है सर वो ऐसे गांव का।
0: चलो ठीक है। और
1: नदी है, बस
0: नदी है। कौन सी नदियां है भैया?
1: बेरमा नदी।
0: तो पानी वानी की कमी तो नहीं है आपके गाँव में भैया?
1: नहीं, पानी वानी तो पर्याप्त है सर, बिल्कुल ऐसी कोई कमी नहीं है।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। और बनवार के लाने दमोह से कहाँ कौन तर पे जाने पड़ा भैया?
1: ये बांदकपुर रोड है ना, बांदकपुर, यहाँ जागेश्वर मंदिर है। वही के आगे है रोड सर, बनवार
0: जो हिंडोरिया रोड कहा है ना।
1: हाँ, हिंडोरिया रोड।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो दमोह से कितने किलोमीटर चलने पड़ा?
1: 35 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, तुम्हारे हिंडोरिया पार करके फिर और आगे जाने पड़ा भैया?
1: हिंडोरिया का रोड अलग है, जो रोड अलग है बानकपुर साइड।
0: अच्छा, तो जाने बोई रोड पड़क फिर बीच में से अलग हो जात हुई है?
1: हाँ, बीच में से अलग हो जाए।
0: हाँ। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। वो वालो रोड तो नहीं जो आनू, जहाँ आनू है वो पहाड़िया का मंदिर है ना?
1: आनू समन, वही वाले जी।
0: चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। और कितनो बड़ो गाँव है आपको?
1: बड़ा है अपने गाँव की सिटी जैसा ही है।
0: चलो बढ़िया बात है भैया। तो सब सुविधाएं हुई है, अस्पताल, स्कूल सब है होते?
1: अस्पताल, हाँ सब है, अस्पताल, दुकान, स्कूल, बड़ी बड़ी दुकान है, सब तो है।
0: चलो चलो। और दशरथ भाई आपका करत हो खेती बाड़ी है आपकी?
1: नहीं सर, हम खेती तो नहीं आवे, तो हम ग्वालियर में अखंड राम नाम कीर्तन चला था, तो हारमोनियम वगैरह बजाते।
0: अच्छा, हारमोनियम बजात हो?
1: हाँ जी।
0: चलो ठीक है भैया। तो दशरथ भाई आपको पता है एक अटका लेके आऊ थे कार्यक्रम में?
1: जी पता है सर।
0: तो अटका पे आ रहे हैं अपन के आंगे आंगे बहने आई पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए चुनरी ओढ़े मैया। अरे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आसान है भैया, अपने आसपास की चीज है, हम आपको संकेत दे रहे, खेती बारी से जुड़ी चीज है।
1: ये हर बखर तो नहीं है सर?
0: नहीं, हर बखर नहीं है भैया। चलो आपको और एक आंगे को संकेत दे रहे, एक फसल है।
1: अच्छा, फसल है।
0: हाँ,
1: कैसा फिर से बताना सर?
0: आंगे आंगे बहने आई पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए चुनरी ओढ़े मैया।
1: ये भुंटा मक्का हो?
0: हाँ, देखो भैया समझ गए आपसे, जैसे ही फसल कही और आप समझ गए है ना
1: जी।
0: मक्का के भुंटा हो सकत है, और हो सकत है कछु और के भी भुंटा ऐसे ही आउट
1: हो, जुनरी भी तो ना,
0: जुनरी हो सकत है ना। हाँ। तो अपन जुनरी या मक्का नहीं कह के भुंटा कहे तो ज्यादा उचित हुई। हाँ, आपने पहले शब्द भुंटा ही कही थी है ना
1: जी।
0: चलो आपने संकेत सुन के बहुत अच्छे से आपने उत्तर दो दशरथ भाई, बहुत अच्छे लगो। अब बता दो आप अपनी फरमाइश।
1: सर हमें एक लोग की सुनने विजय सिंह ठाकुर को। तुम्हारी हती सो जा रही गोरी जी यारा काय सो जा रहा है।
0: तो लो भैया आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं दशरथ भाई, आपको सुनवा रहे हैं विजय सिंह ठाकुर और इनके संगी साथियों को गाओ जो श्रृंगार गीत।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो।
2: हाँ नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें, लोग ये सुने।
2: जी सर, मैं सुरेश राजपूत बोल रहा हूँ, ग्राम तुमरा, जिला नरसिंहपुर से।
1: सुरेश राजपूत
2: जी सर।
1: एक पहले कब लगो तो सुरेश भाई आपको फोन?
2: नहीं सर जी, पहली बार लगाया है।
1: पहली बार लगा है सुरेश राजपूत। नरसिंहपुर के कौन से गाँव से बताइए आपने?
2: ग्राम तुमरा, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाड़ा।
1: तुमरा का नाम है भैया, होते तुमा उमा होत का ज्यादा?
2: अब सर जी ये तो बहुत पुराने नाम धरे हैं आज के, नहीं है तुमरा तो यहाँ नहीं होते, वो तो नाम ही तुमरा पड़ो इसको।
1: चलो चलो ठीक है, वो ये हम जानो चाह रहे थे भैया, एकदम से जब तुमरा नाम सुना था ना तो हमें ऐसा लगो के हो सका तो तुमा उमा की ज्यादा खेती हो।
2: नहीं नहीं, तुमा की तो नहीं हो खेती, तो इधर अपने इधर इस समय तो मूंग लगी है।
1: हाँ मूंग हो गई और
2: गन्ना की खेती होती है।
1: गन्ना, गन्ना की निश्चित रूप से भैया उत्तर पे ज्यादा खेती होते है। तो गन्ना भैया जब पजत है तो अकेला ने बेचत कहाँ हो आप? उन्हें
2: यही गांव में फैक्ट्री है ना सर,
1: शक्कर की फैक्ट्री है।
2: हाँ जी।
1: चलो भैया, तो शक्कर के कारखाने में अच्छी कीमत मिल जाता आप और हो गन्ना की?
2: हाँ जी, रेट से उठाते हैं भी।
1: चलो अच्छी बात है। अच्छा भैया, जब जब उतर करेली तर पे जाओ, नरसिंहपुर तर पे जाओ, सो रास्ता में रातों रात जो है बड़ी अच्छी गुड़ की खुशबू आत है।
2: हाँ जी, वे भट्टी क्षेत्र में हर किसान के खेत में भट्टी लगी है, किसान गुड़ बनाता है।
1: तो गुड़ कैसे बना थे थोड़ा सा संक्षेप में आप बताओ हमारे सुनने वालों को।
2: जैसे अपन गन्ना को रस पिया थे वो छोटी मशीन होते है।
1: हाँ
2: ऐसे ही बाकी साइड में बड़ो क्रेशर आता है।
1: हाँ सो रस निकाल लो पहले,
2: ड्राई करी और ऑटोमेटिक कढ़ाई में रस पहुंच जाता है।
1: अच्छा,
2: तो वो खोला थे, मजदूर लगे रहते हैं, आग जलती है भट्टी टाइप।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ।
2: और जब उसकी चाशनी आ जाती, वे गोली देखने वाले समझते हैं, अपन तो नहीं समझते।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: तो वो चाशनी आ जाती, नहीं उठा कर अलग नीचे रख देते हैं भट्टी से, और जब ठंडा हो जाता है वे बाट में नाप रहते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: 10 किलो के, 5 किलो के, उनमें कर देते हैं।
1: अच्छा, और भैया कहने लगा ताजो गुड़ अगर एकदम

0: ताजो बन के निकल रहा हो वो खाले तो नुकसान करत है वो।
1: नहीं जी, नुकसान नहीं करे, गुड़ तो फायदा करता है। शुद्ध गुड़ जो आजकल तो मिलावटी वारो ज्यादा बना है।
0: हाँ नहीं, कोई कहने लगत कि अगर एकदम से गरम गरम खा लो तो दिक्कत हो जात वो।
1: नहीं ज्यादा मत खाओ, 50 ग्राम के लगभग खाओ, डेली खाओ तो बहुत फायदा करे।
0: वो तो खैर मालूम है, बाकी हम बता रहे कि कोई बता रहा हो तो कि गरम गरम एकदम ताजो खा ले तो भैया दूसरी तरफ से कड़वे को डर रहे तो माने दस्त दस्त लग जाओ।
1: है अगर वो अतिखे हो तो कोई भी चीज हो नुकसान तो कर है, और नियम से खाओ तो वो तो दवा गुड़। हम तो डेली नियम से गुड़ की डिगड़ी रोटी के साथ में खाते ही है।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, हमेशा आप स्वस्थ रहो। और सुरेश भाई।
1: हाँ
0: जी। नर्मदा से कितनी दूरी है आप जहाँ रहे थे? नर्मदा पास ही
1: 3 किलोमीटर सर जी है यहाँ से नर्मदा जी। आपने सुना हो उदयपुरा तो सुना होगा?
0: बिल्कुल सुना है भैया।
1: से दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर पड़ता है, ये नरसिंहपुर जिला में लगता है हमारा, उदयपुरा रायसेन जिले में आता है।
0: चलो चलो ठीक है भैया। और सुरेश भाई अब आगे अपन अटका पे आउट है।
1: हाँ जी, अब बन है तो बताएंगे सर जी।
0: बिल्कुल बन है भैया, खेती बाड़ी से जुड़ी भाई चीज है। केन लगत के आंगे आंगे बेने आई पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए चुनरी ओढ़े मैया।
1: चुनरी ओढ़े
0: मैया।
1: सर जी अटका में तो दिमाग नहीं दौड़ पा रहा मेरो।
0: नहीं सुनो ना, ध्यान से सुनो, बिल्कुल आसान चीज है, खेती बाड़ी से जुड़ी चीज है।
1: नहीं जी, असल में कहा मैं खेती से नहीं जुड़ा, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ।
0: चलो चलो कोई बात नहीं, तो बताओ, बहुत आवश्यक भी नहीं रहे थे
1: जी। जी
0: आप कार्यक्रम सुनो, आपको पता पड़ है। और सुरेश भाई फरमाइश बता दो आप अपनी।
1: फरमाइश भजन सुना दो सर जी, अधिक मास चल ही रहो है।
0: भजन कौन को सुनवा दे भैया?
1: चंद्रभूषण पाठक जी का सुनवा दीजिए।
0: चलो ठीक है सुरेश भाई, ले हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ जो लोक भजन।

जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर

0: और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ, संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो, हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें, लोकगीत सुने।
2: नमस्कार सर, बहुत दिनों में बात हो रही है आपसे।
1: नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं, नाम बताओ आप अपना।
2: धर्मेंद्र अहिरवार बोल रहे सर, ग्राम बरोदिया बल्लभ, जिला सागर से।
1: धर्मेंद्र अहिरवार बरोदिया बल्लभ।
2: जी सर।
1: धर्मेंद्र भाई
2: जी,
1: बरोदिया बल्लभ कहाँ है?
2: जी अपनी जलंधर जो आलमाई के पास में है, बरोदिया बल्लभ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान आ गई भैया।
2: जी साहब।
1: तो उते जलंधर से कितनी दूरी है? एक ही
2: बरोदिया 4 किलोमीटर दूर है जलंधर से।
1: सो यही तरफ चांदा मऊ तर पे है के ओ तरफ राहतगढ़ तर पे?
2: नहीं, अभी जो श्यामरा फाटक से रोड गए ना जलंधर को।
1: अच्छा अच्छा,
2: जरूर खड़ा खा आ जाओ, चाहे कहीं से भी आ जाओ, चारों तरफ से।
1: हाँ हाँ, चलो भैया बहुत अच्छी बात है। और कितो बड़ो गाँव है भैया?
2: 1500 वोट है।
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आज बड़े बड़े गांव के आदमी फोन लगा रहे भैया। जितने लोगों से हमने कही, सबके गांव अच्छे हैं भैया आबादी में। चलो भैया, तो बरोदिया बल्लभ में का का सुविधाएं हैं आपके? ते स्कूल, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, आंगनवाड़ी, ये सब चीजें हैं?
2: अकेली स्कूल अस्पताल लगिया। हाँ, आंगनवाड़ी स्कूल है साहब।
1: तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं है?
2: महीना अक्षर नाल लगे है।
1: अच्छा,
2: और का वो तो पिछड़ा गांव है।
1: तो एक पहले पानी की का दशा हती?
2: नल हट पंप लगे थे अपने घर का, ट्यूबवेल है, इनसे भरत रही थी साहब।
1: अच्छा, अब नियम से पानी आन लगो है?
2: अब नियम से 1 घंटा हर दिन।
1: तो टंकी बन गई हुई है आसपास कहूँ?
2: जी सर।
1: चलो बहुत बधाई हो भैया आपके लाने। कैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना भैया, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पानी हो, है ना
2: जी।
1: सिंचाई को पानी हैंडपंप या उसे लेत हुई हो?
2: जी,
1: चलो। और खास तौर से किसानी ही होती है गांव में मुख्य रोजगार?
2: जी किसानी।
1: खेती काय की होते?
2: ज्यादा होते हमारे मसूर, चना, पिसी।
1: चलो अच्छी बात है भैया।
2: प्याज मेरा, प्याज भी लग जाता है, बता प्याज।
1: आप का का लगा था भैया?
2: हम चना, मसूर और पिसी।
1: अबे मूंग उंग नहीं बाए भैया?
2: नहीं, बहुत तो पानी नहीं है साहब।
1: अच्छा अच्छा, तो का गहरी जुताई कराई का ये बार?
2: जी प्लाव करवा।
1: चलो अच्छी बात है। कितनी जमीन है भैया?
2: सर हमारी 4 भाइयों के बीच में 12 एकड़ है।
1: चलो अच्छी, तो सब जने अबे मिलजुल के रहते हैं भैया?
2: जी साहब।
1: अरे वाह वाह, जब बहुत अच्छी बात है भैया, संयुक्त परिवार है आपको, ऐसे में कोनो एक पे बोझ नहीं पड़ता है ना, एक काम एक ने निपटा दो, दूसरो दूसरे ने, तीसरो तीसरे ने, फटाफट काम हो जात। चलो ठीक है भैया। और धर्मेंद्र भाई, अब अटका पे आते हैं आज के?
2: जी साहब।
1: कहने लगत के, अच्छा पहले आपको बता दें, हमने सबको संकेत दे दो है, आपको भी दें दे रहे कि आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी को जो अटका है।
2: जी बताओ सर।
1: कई आंगे आंगे बहने आई, पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए, चुनरी ओढ़े मैया। हाँ बिल्कुल भैया, हमने कही थी कि आप खेती बाड़ी से जुड़े हो, आपने फट से बता दी। मका तो
2: भुंटाई के कड़ा थे।
1: हाँ, मका तो अपन नहीं कह सकत, भुंटा कह दो, कैसे और कछु के भुंटा भी ऐसे होत हुई है ना। हाँ, तो भुंटा एको सही उत्तर है। बहुत अच्छो लगो, आपने बिल्कुल इंतजार नहीं करो, फट से आपने उत्तर दे दो। चलो ठीक है भैया। और अब बता दो धर्मेंद्र भाई, फरमाइश।
2: फरमाइश सर, गर्मी को लोग भी सुनवा दिए सर।
1: बिल्कुल सुनवा है भैया, कलाकार को नाम बता दो तो ज्यादा अच्छो रहे।
2: रामचरण यादव जी को।
1: गर्मी के मारे मोरे प्राण कड़े जाए, चलो सोबू बाहर है।
2: जी सर। साहब हमने बहुत लोग भी सुने हैं अपनी आकाशवाणी से।
1: हाँ
2: जी, लोग भी तो हम सुनते ही रहते हैं, चालू एफएम सुबह से शाम तक।
1: अरे वाह भैया, बहुत अच्छी बात है,
2: दुकान में लगाए हैं।
1: हाँ, तो ऐसे ही जुड़े रहो आप आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों से। और ले भैया, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं रामचरण यादव और उनके संगी साथियों को गाओ जो लोकगीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो।
2: हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें, लोग गीत सुने। को बोल रहे हैं आप?
1: सुनील पांचाल बात कर रहे हैं।
2: सुनील पांचाल, बहुत स्वागत है आपको पांचाल जी। और बताओ भैया, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: वैसे सर हमारा घर है राग हमीरपुर।
2: अच्छा,
1: जो हमीरपुर महोबा है तो राग क्षेत्र में हमारा घर है।
2: हाँ,
1: और आजकल हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं, लुधियाना में हमारी पोस्टिंग है।
2: अच्छा अच्छा।
1: और हमने कई बार हमने फोन भी करो जैसे कर भैया से हमारी बात, भाई सफी से और सुब्रता बिन्नु से।
2: अच्छा,
1: कई बार हमारी बात आज सुधरा दिन से, अब एक साल से हमारा फोन नहीं लगो। तो
2: चलो भैया, तो आज हमसे भी बात कर लो।
1: बिल्कुल।
2: सुनील भाई, कौन किस्म को काम रहे थे आपको बैंक में?
1: हम देखो सर, हमें हैंडीकैप, हमें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो ट्रेनिंग सेंटर में भी हमें लगाए थी, जैसे हम कॉलिंग वगैरह कराते हैं, जैसे मान लो काउ की ट्रेनिंग भाई बैंक वाले की है ना।
2: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इन सब चीजों में हमें लगाए हैं जी, तो हम वही में हम काम कर रहे हैं।
2: चलो चलो भैया, तो आपने पढ़ाई लिखाई ब्रेल लिपि से करी हुई है ना?
1: ब्रेल लिपि से भी करी, कंप्यूटर से भी करी।
2: हाँ हाँ।
1: और रिकॉर्डिंग से भी पढ़ाई करी हमने, एमए पास करी हमने, पोस्ट ग्रेजुएशन।
2: अच्छा, कितने साल हो गए भैया आपको नौकरी करत?
1: अब 6 साल है भाई हमें।
2: 6 साल हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है भैया। तो समय विशेष पे जब अवकाश मिलत हुई है तो घरे आत हुई हो?
1: 3-3 महीना में उतरा घरे।
2: हाँ हाँ।
1: और नहीं हो तो कब हम घर वाले से बोला लेते कहीं।
2: बहुत अच्छी बात है भैया। कैसे अपन बाहर वास रहो भैया, तो परिवार की याद आत है ना?
1: बिल्कुल, परिवार की याद आऊ, गाँव की याद आऊ।
2: हाँ,
1: किसी याद नहीं आऊ, तुम्हारी सबकी याद आऊ।
2: सही कह रहे भैया। तो सुनील भाई, तन्नक आप अपने गाँव के बारे में भी बताओ, आपको गाँव जहाँ आप।
1: हमारा गाँव है बंगरा।
2: अच्छा।
1: ठीक है, जिगनी बंगरा हमारा गांव है, छोटो सो गांव है, ज्यादा मतलब हुए वही में करीबन 5-6-7 बकरी हुए हैं।
2: अच्छा।
1: और क्या बताएं, हमारे लिए तो ऐसा कछु है नहीं है, कहूँ जब जाने आने हो तब ऐसे हम झांकी हुआ।
2: हाँ।
1: झांकी हमारे तो से पास में पड़ जा।
2: अच्छा।
1: तो वही किला इला दिखी आऊ झांकी को।
2: हाँ हाँ।
1: और महोगा घूमी आऊ कबू कबू
2: भैया, कछु न हो आसपास जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो वृक्ष हैं, जो जंगल हैं, जो नदियां हैं, जे भी कम
1: नहीं, इनको तो फिर जवाब ही नहीं है ना।
2: हाँ,
1: ये तो फिर प्रकृति में जो अंतिम दे रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो यही रही ना।
2: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात अपनो घर, अपनो घर हो थे भैया।
1: अपनो घर से कैसा भी हो, चाहे टूटी टपट जाए।
2: हाँ बिल्कुल, अपनो घर, अपनो गाँव, अपनी धरती हमेशा याद आते।
1: बिल्कुल।
2: चलो भैया, सुनील भाई अब आते हैं आज के अटका पे।
1: जी बताए।
2: कहने लगत के आंगे आंगे बहने आई, पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए, चुनरी ओढ़े मैया।
1: चुनरी ओढ़े मैया।
2: हाउ
1: ये क्या है?
2: सबको संकेत दो है, आपको भी दें दे रहा, खेती बारी की चीज है।
1: बढ़ाई
2: ए?
1: बढ़ाई बढ़ाई।
2: थोड़ा सा और ध्यान दो आप, एक फसल है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी फसल आप थोड़ा सा और ध्यान दो।
1: अरे भाई, जुन में अपने से ज्वार भी हो, जुंडी।
2: सही कह रहे भैया, भुंटा।
1: भुंटा
2: है ना।
1: हाँ।
2: अब चाहे आप
1: पहली बार हमने अटका पे, अटका पे ध्यान दो है यार।
2: हाँ, चाहे आप अब जुंडी को कह लो, चाहे आप मका को कह लो, भुंटा है ना। चलो ठीक है भैया, तो बहुत अच्छा लगा
1: सुनने हैं सर।
2: हाँ।

0: चिरैया की आवाज में
1: हाँ
0: कोई सा अच्छा लोग भी सुनवा देना।
1: चलो ठीक है भैया, तो सुनील भाई लो आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। आपको सुनवा रहे हैं चिरैया को गाओ भाव जो लोक शैलीबद्ध।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
2: जी जी, जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह। सागर से 30 किलोमीटर दूर है गांव बिलउआ।
1: और एक पहले कब लगो तो आपको चरण भाई फोन?
2: जी हमारा लगो तो अगस्त में 26 तारीख को।
1: 26 तारीख को अगस्त में?
2: जी जी जी।
1: हाँ ठीक, चरण सिंह बिलउआ, 1 तारीख को 9वें महीना में बजो तो वो कार्यक्रम है ना?
2: जी जी।
1: चलो ठीक है, बहुत अच्छी। खास तौर से ये बात की प्रसन्नता भाई कि आपने नियम को ध्यान रखो भैया चरण सिंह।
2: हाँ, 3 महीना को नियम रहते
1: हैं। तो चरण सिंह जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जोन तरीके से जयराम जी करी ना, आनंद आ जात। जब कोई आदमी उत्साह के संग बोलत है तो हमारो को भी उत्साह बढ़ जात।
2: नहीं, उत्साह तो रहता है सर जब तो फोन लगाते हैं।
1: चलो तो चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में। और बताओ भैया, बिलउआ कितना बड़ा गांव है आपको?
2: हमारे सर 1500 की बस्ती है।
1: और बंडा से कौन तरफ चलने पड़त है?
2: जो बंडा के एक तरफ, बंडा से एक तरफ, बंडा से 20 पड़त है, सागर से 30 बीच में है। माने अपने सागर ही को लौटने पर है बंडा से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगो आपके गांव के बारे में जान के। और करत का हो चरण सिंह जी आप बिलउआ में?
2: किसान हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। अबे बखानी करवा, ये पिलाव करवाओ है, और जो कच्चो खात डरवाओ है जो।
1: वाह वाह वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। गर्मी में मतलब जे सब तैयारियां करवे की रहते हैं ना?
2: हाँ हाँ, गोबर का कच्चा खाद डारा है।
1: हाँ, पिलाऊ आपने करवा लाओ, गोबर की खाद को बंदेज मतलब आपने व्यवस्था कर ली है ना?
2: जी जी जी।
1: चलो ठीक है भैया। और
2: आपके किसान वाणी सुनते रहते हैं।

0: सभी सागर के सुनते रहते हैं कार्यक्रम।
1: हाँ, किसान वाणी से कछु फायदा मिला था आपको?
0: हाँ, बहुत अच्छी फायदा मिलती है, उसका लाभ लेते हैं सर। आप बताते हैं उसका दवाई न ज्यादा छटके, उसके हानिकारक होती है।
1: हाँ, और भैया गर्मी की मूंग के बारे में भी बताऊ थे, हमारे के गर्मियों में मूंग अपन खोलना चाहिए तो नहीं लिया आपने
0: इस गर्मी में? हाँ, थोड़ी बहुत उसी लेते है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन से कार्यक्रम सुन लेते भैया आप?
0: सागर के सभी है, लोकगीत है, जे हरो फरमाइश और किसान वाणी है, ये सभी सुनते रहते, सवेरे से सुनते हैं, समाचार सुनते रहते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, और आपकी बातचीत से समझ में आ रहा भैया कि आप बड़े सजग किसान हो, सक्रिय किसान हो, है ना?
0: जी,
1: सब जो गर्मियों में काम करवाओ चाहिए भी आपने करवाया है। पानी की क्या व्यवस्था है, तो सिंचाई की खास तौर से?
0: अपने तो आप कुआ ही है, कुआ की व्यवस्था है।
1: अच्छा, आसपास कोई नदियां सोई है भैया?
0: नहीं, नदी तो नहीं है आसपास, अपने पास में तालाब बंध गया है जो।
1: हाँ,
0: पास ही में 1 किलोमीटर दूर है।
1: अच्छा अच्छा, चलो भैया, तो उसको कछु फायदा मिलत है कि नहीं?
0: नहीं, अपने इस तरफ तो नहीं मिलते है,
1: मतलब
0: आस पास के गाँव फायदा मिलती है।
1: और पीबे के पानी की क्या व्यवस्था है भैया? होते
0: है, बोर है, कुआ है, नल है।
1: चलो, नल भी है ना?
0: हाँ जी जी।
1: चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। और बाकी और सुविधाएं, अस्पताल, स्कूल जो भी हैं?
0: हाँ, 8वीं तक स्कूल है।
1: चलो ठीक है, तो चरण सिंह जी,
0: जी।
1: बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अब आउट है अपन आज के अटका पे।
0: जी जी जी,
1: तो ध्यान से सुनियो, खेती बाड़ी से जुड़ो अटका है।
0: जी जी,
1: केन लगत आंगे आंगे बहने आई, पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए, चुनरी ओढ़े मैया। हंस रहा भैया?
0: नहीं नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर।
1: नहीं, बिल्कुल आसान है भैया, हमने बताई खेती से जुड़ी चीज है, आप खेती बाड़ी से जुड़े हो।
0: जी जी जी,
1: और ज्यादा है तो हम जा बताएं, एक फसल है जा।
0: जी,
1: आगे आगे बहने आई, पाछे पाछे भैया, और दांत निकारे दादा आ गए, चुनरी ओढ़े मैया।
0: वो तो नहीं, ये मक्का है।
1: हाँ बिल्कुल भैया, भुंटा है ना?
0: हाँ, जी, जी, जी।
1: हमने कही थी कि आप थोड़ो सो ध्यान दो आज।
0: जी जी जी,
1: घुंटा ही है ना?
0: हाँ जी।
1: चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगो, आपने उत्तर दे दो भैया, थोड़ो सो दिमाग पे जोर डाल के, और आप बता दो अपनी फरमाइश चरण सिंह जी।
0: गर्मी के उसे कोई भी लोग भी सुना दो सर।
1: गर्मी को?
0: हाँ जी जी जी, तो अब गर्मी पड़ रही है हर जगह बहुत है,
1: तो आप
0: गर्मी को सुना दो, उर्मिला पांडे को गर्मी को लोग भी सुना दो सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो ले आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी फरमाइश पे जो लोक शैलीबद्ध गीत, एक गा रही है उर्मिला पांडे।
0: जी।

तो भैया हर उर्मिला पांडेय के गाय ए गर्मी संबंधी लोक गीत के संगे आज को जो कार्यक्रम पूरो हो रहा है। आज ये कार्यक्रम में अटका जो लेके आए थे भैया उकी कोनु बात ही नहीं है, बहुत से श्रोताओं ने उत्तर दे दो आगे आगे बहने आई पाछे पाछे भैया और दांत निकारे दादा आ गए चुनरी ओढ़े मैया भुंटा एक उत्तर है तो लोगों ने खूब आराम से बताओ भैया और बड़ा अच्छा लगा था जब दो चार श्रोता उत्तर दे दिए थे नत्र भैया उनसे ही निखनने से उदास हमारे लौटे थे। भुंटा जब खेत में लगा थे भैया तो पहले बाले आऊ थे जिनको बेने बताई गई है और पाछे पाछे भैया और दादा आ रहे हैं भैया दांत निकाले जो दाने निकलते हैं है ना और अखीर में जब पत्तों से जो भुंटा ढकत है भैया तो चुनरी ओढ़े मैया ए तरीके से जो अटका लगाओ तो आज को जो पारंपरिक अटका हम तक पहुंचाओ ग्राम चांदोनी जैसी नगर सागर से माधव सिंह क्षत्रिय और इनके परिवार वालों ने। तो माधव सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि तो अच्छो अटका आपने पहुंचाओ आगे भी अगर आपके पास ऐसे पारंपरिक अटका होते हैं तो आप पहुंचा उतरो और हम शामिल करते रहें। यही अटका के बहाने आप औरों से भी निवेदन है कि आप औरों के पास अगर अच्छे अच्छे अटका रहते हैं तो आप औरें आकाशवाणी सागर के फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो चिट्ठी द्वारा पहुंचा सकते हो। हमारा पता है चिट्ठी में ऊपर लिख दो अटका कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र सागर। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाओ चाहत हो तो इते को व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बताए देते हैं भैया जो है 9770432297। तो हमें आशा है आप औरों ने जो लिखला हुई है और हाँ अगर आप एक श्रोता के रूप में कार्यक्रम में अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश दर्ज करावो चाहत हो तो हर मंगलवार को संजा को 4 बजे से आपकी फरमाइशें रिकॉर्ड करी जात हैं और एक और नंबर भी आप लिख लो भैया जो है 240-845 और एक पहले आपको सागर को एसटीडी कोड भी लगाने पड़े है जो है 075-82। और अब चलत चलत आपको बता दें भैया कि आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से बतकाव कर रहे थे हम सतीश साहू और कार्यक्रम को संयोजन हतो दीपक निषाद को। तो भैया एक बार फिर आपसे वही निवेदन कर है कि गर्मी से खुद बचो अपने परिवार अपने पशुधन को भी बचाओ। कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने के अगले अंकों में आप औरों से फिर भेंट हुई है यही आशा और यही उम्मीद के संगे फिलहाल हमें दो अनुमति राम राम।

0: फोन करें, लोकगीत सुने। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: और आइए संदेश के बाद सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
0: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है
2: जी।
0: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर, जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं, लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है
0: जी। ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
2: जी।
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
2: जी।
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
2: जी। अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की

जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं

0: अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।

0: हाँ
1: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
0: अच्छा आ रही हूँ। जी कहिए।
2: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम, ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
0: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
3: माँ माँ
4: लो माँ मैं आ गया, आपने जो काम दिया था ना वो भी हो गया।
0: अच्छा क्या बेटा तू आ गया, ले बेटा देख तो जरा तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
4: चिट्ठी? अरे वाह ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
0: हाँ।
4: माँ माँ माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, माँ सेना में मेरा चयन हो गया है।
5: हा?
4: मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह
0: बधाई हो बेटा बधाई हो।
5: ऐसे नहीं बधाई हो भैया बधाई हो भैया।
4: अरे योगेंद्र।
0: अरे बेटा अब तो ये घर फौजी का नहीं फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
4: हाँ माँ।
2: और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा, इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
0: हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
2: ऐसे नहीं आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
6: तो साथियों बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
7: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
6: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
7: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
6: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
7: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
6: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999

0: ध्यान वे। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय!
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा

0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
1: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। थोड़ी देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रैली किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 2रे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
5: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ओपिनियत का ये सुरीला संगीत था मंजूर सुल्तानपुरी के बोल मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत था और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तरह ही।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली हंसी की खनक यादों की महक बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं विविध भारती के साथ सुरीले सफर में। आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओं, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करती, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं, और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं थोड़े से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉगिन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज जो भी आप कहें या इबारत कहें उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रिया हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करती पर्वत करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध की घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है। यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है। किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वती गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नज़ारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, निपथ में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ ख़ास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं ज़रूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना। और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्म आया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गाँव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं?

जब आप गए ऐसी किसी जगह पर घूमने के लिए। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओं हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज़ खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा, पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक, गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं और इन चीज़ों को ख़रीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों, चांद, रास्ते, परदेसी, बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहाँ की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियाँ और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती।

पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं। पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोता। और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं। तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की नफाहों की ठंडक मिलेगी। शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओं। तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताज़ी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मनमोहक दृश्य यकीनन सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

से मोहम्मद रफी की आवाज थी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसे ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं। जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमीं अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओ कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें जरूर बताएं। और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं।

जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है। दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है। दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हम

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज़ की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाज़ारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाज़ार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती हैं। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दीयों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज़्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो। पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है, आवाज़ आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहाँ जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियाँ हों या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताज़ा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इमारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहाँ अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज़्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहां की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है। ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थीं? पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं? श्रोताओ, पहाड़ों

गीतकार आप बता दें इस गीत के प्रोफेसर, फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ। मुझे पहाड़ों पर जाना, वहाँ घूमना, वहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूँ तो पहलगाम, शिलांग और खजिया, बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज़ जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफ़र में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफ़र क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नज़ारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और वहाँ की शीतलता मन को सुकून पहुँचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोताओं, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में। जी हाँ, दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

आप कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरे सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी फिल्म का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में उमराव जान फिल्म की ये गजल।

आशा भोसले की ही आवाज में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह। इस गीत में आशा भोसले के साथ आप सुनेंगे उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज।

0: जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं, कहे देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का यह कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और

0: के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले तीन दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 40 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज डरडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
4: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि

0: सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को

0: जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफ़ी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए,
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं हैं या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद ही
0: फंस गई थी।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है।
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, इन बकरी ईद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार, कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज इसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: मुबारकबाद देते हैं।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमज़ान के ख़त्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चाँद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये,
1: जब है ना जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही इतना आनंद की अनुभूति होती है ना, फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है। वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर

0: बार एकदम खुश खुश रहते हैं, मैंने उनके काम में
1: हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
0: जी
1: आज हम बात करेंगे
0: के चेलम्मल जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, जैविक तरह की उन्होंने खेती की।
1: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
0: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
0: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों के फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेलम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चेलम्मल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेलम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
1: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो उसके लिए भी इन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
0: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं, और श्रीमती चेलम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
1: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
0: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
1: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
0: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
1: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, वो कला को अपने निखारना चाहिए।
0: और अब एक संदेश सुन ले।
1: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है, तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
1: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखियां वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है.
1: बिल्कुल. वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के.
0: कि देखिए कभी कभी ऐसा था ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए.
1: ये तो होता है, ये तो होता है.
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा. पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है. और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो. और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है.
1: उन्हें उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं. जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ.
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है. बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं. जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं. जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है. उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं. तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है. कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की. प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं. इससे बच्चों में लगन बढ़ती है. और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं करता कुछ नहीं है. तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है. उन्हें सिखाए, और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए.
1: बिल्कुल. और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है. इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े. तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए.
0: क्या बात है,
1: ताकि एक हमारे आगे कर सकें.
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती, तुमसे अच्छा कोई नहीं. ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है. जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता. अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें. सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं. इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए.
1: बिल्कुल. और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से. तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है. ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है. सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए. उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए. झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, और वो विफलता से डरने भी लगते हैं, और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है.
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ. मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है. मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है. इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी है। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपने जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है, है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया जरूर रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि सोचते हैं हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो माँ बाप की जो कमाई

0: होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
1: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
0: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है।
1: और ये जो गेमिंग जो है जो होते हैं ना इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
0: जी कोई नहीं,
1: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
0: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।
2: ¶¶

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जब कदम भी चलना तो पोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई,
1: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
0: जी।
1: तो कभी कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे की टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए।

0: जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जिससे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
1: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
1: अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें और कई सारी बाधाओं से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है। तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है। बिल्कुल, तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए, हमें
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आती है आज की मुलाकात,
1: आज की मुलाकात बस इतनी,
0: इतनी। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, बताते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इतनी समय 36 साल के, मान लीजिए हम 6-7 जब से हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3-6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं, अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी,
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजी पीर से जब्बार मोहम्मद,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजी पीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है, और दो दरगाहें भी देखने लायक है, यहाँ मस्तान बाबा की दरगाह फतेहसागढ़ के आसपास, और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं
1: जी।
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे वाह,
1: तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा जी, ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के। इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।

0: बिल्कुल दीदी
1: चीजों का।
0: और वैसे प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायांकित।
0: छायांकित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा, हमजोली फिल्म से। आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ढल गया

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।

0: बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लू बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
1: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
0: हाँ
1: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
0: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
0: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
1: 1980 से सुन रहे हैं?
0: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
1: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
0: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
1: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका जाति महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ, खुराक में है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बेग का जूट का काम, बारदान, बारदान जिसमें अनाज भरा था, गेहूँ, दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? टैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से, कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी।
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं, उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में, और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता में राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सैटेलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 तक वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने समधन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़, तहसील खिरकिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के पंकज सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है, लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: माँ, मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। पहली

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनना है गाना पत्थर के फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022286702888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। और भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, जहां युवाओं की सोच, समाज की बात और नए विचारों की आवाज मिलती है। मैं हूं आयुषी द्विवेदी।
1: और मैं हूं आद्या नायक। हम आपका दिल से स्वागत करती हैं इस खास प्रस्तुति में, जहां हर चर्चा होगी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और युवाओं के लिए बेहद खास।
0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दो प्रश्न पूछकर, जिनके उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है?
1: और आज का दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी थी? दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से और जिसे गाया है विशाल डादलानी और सचिन जिगर ने।
2: मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों,

0: दोस्तों, आज का दौर सूचना और अभिव्यक्ति का दौर है। हर तस्वीर अपने भीतर एक कहानी छुपाए रहती है और उन्हीं कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है फोटो जर्नलिज्म।
1: जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पहली चर्चा का विषय है फोटो जर्नलिज्म, तस्वीरों के माध्यम से सच और समाज की अभिव्यक्ति। तो आयुषी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताते हैं कि आखिर फोटो जर्नलिज्म है क्या।
0: बिल्कुल आद्या, फोटो जर्नलिज्म पत्रकारिता की वह विधा है जिसमें तस्वीरों के माध्यम से समाचार, घटनाएं और भावनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। एक प्रभावशाली तस्वीर कई बार हजार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देती है।
1: सही कहा आयुषी, कई बार हमने देखा है कि किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, खेल या सामाजिक घटना की तस्वीरें लोगों के दिलों को सीधे छू जाती हैं।
0: जी हाँ, क्योंकि तस्वीरें केवल दृश्य नहीं दिखाती बल्कि उस समय की भावना और सच्चाई को भी सामने लाती है। इसी वजह से फोटो जर्नलिस्ट समाज की आंखों और आवाज माने जाते हैं।
1: लेकिन आयुषी, फोटो जर्नलिज्म की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है ना?
0: बिल्कुल आद्या, एक फोटो जर्नलिस्ट को सच्चाई, संवेदनशीलता और नैतिकता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तस्वीरों को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वे सही संदेश और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं।
1: आयुषी, आज सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति मोबाइल से तस्वीरें ले सकता है, ऐसे में प्रोफेशनल फोटो जर्नलिज्म की क्या खासियत रह जाती है?
0: आद्या, प्रोफेशनल फोटो जर्नलिस्ट केवल तस्वीर नहीं लेते बल्कि सही समय, सही एंगल और घटना की सच्चाई को समझकर प्रस्तुत करते हैं। उनकी तस्वीरें समाज को जागरूक करने और सोच बदलने की ताकत रखती है।
1: वाकई, फोटो जर्नलिज्म केवल कैमरे का काम नहीं बल्कि संवेदनशील सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी माध्यम है।
0: दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम के दूसरे गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क 2 से और जिसके गायक हैं दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब समय है एक विशेष वार्ता का, जिसका विषय है भारत में युवा और सतत विकास। आज के दौर में युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों और अवसरों को भी सुरक्षित रखे। तो आइए इन्हीं महत्वपूर्ण विचारों पर प्रकाश डालने के लिए सुनते हैं ये वार्ता भारत में युवा और सतत विकास, और वार्ताकार हैं कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत में युवा और सतत विकास। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारे युवा केवल रोजगार की तलाश में है या वे देश और पृथ्वी के भविष्य को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। यहीं से शुरू होती है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। सतत विकास क्या है? सतत विकास का सरल अर्थ है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। यह शब्द पहली बार वैश्विक स्तर पर 1987 में चर्चित हुआ जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसे स्पष्ट किया गया। आज पूरी दुनिया 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य पर काम कर रही है। भारत भी इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के युवा एक जनसांख्यिकीय शक्ति। भारत में आज करोड़ों युवा हैं, गांवों में, शहरों में, कॉलेजों में, स्टार्टअप में, खेती में और तकनीक में। अगर यही युवा सही दिशा में काम करें तो भारत न केवल आर्थिक शक्ति बन सकता है बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक उदाहरण बन सकता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। आज भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें शामिल है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन। यह समस्याएं केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। युवा क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, केवल पौधारोपण नहीं बल्कि उसे बड़ा होने तक संभालना, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, कपड़े के बैग, स्टील की बोतलें, पर्यावरण मित्र का उत्पादन करना, जल संरक्षण, घर में टपकते नल ठीक करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जल संरक्षण युवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी। भारत के कई हिस्सों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। कई युवा समूह

0: गांवों में तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जल जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगर युवा आगे आए तो गांव आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खेती सुधर सकती है, पलायन कम हो सकता है। जल बचाना केवल पर्यावरण नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता। भारत में रोजाना हजारों टन कचरा निकलता है। अगर युवा आगे बढ़ें और गीले और सूखे कचरे को अलग करें, घरों में कंपोस्ट बनाएं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें, तो शहर और गांव दोनों स्वच्छ हो सकते हैं। स्वच्छता केवल सफाई नहीं है, यह स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी भी है। नवीकरण ऊर्जा और स्टार्टअप संस्कृति। भारत में आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में बड़े अवसर हैं। कई युवा सौर पैनल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस प्लांट जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इससे तीन लाभ होते हैं, रोजगार सृजन, प्रदूषण में कमी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। सतत कृषि और ग्रामीण युवा। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर ग्रामीण युवा जैविक खेती अपनाएं, कम रसायनों का उपयोग करें और जल संरक्षण तकनीक अपनाएं, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। भारत कृषि भविष्य की आवश्यकता है। तकनीक और डिजिटल जागरूकता। आज का युवा डिजिटल है। सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण अभियान चलाए जा सकते हैं, जागरूकता फैलाई जा सकती है, गलत जानकारी का विरोध किया जा सकता है। तकनीक अगर सही दिशा में उपयोग हो तो वह परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। शिक्षा और मूल्य आधारित सोच। सतत विकास केवल तकनीक से नहीं आएगा बल्कि सोच से आएगा। स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा, नैतिक मूल्य, सामुदायिक सेवा, इनका समावेश जरूरी है। भारत की वैश्विक भूमिका और युवा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है, लेकिन केवल सरकार के प्रयास काफी नहीं है। जब भारत का हर युवा यह सोच ले कि मैं पृथ्वी का संरक्षक हूं, तभी वास्तविक परिवर्तन आएगा। व्यक्तिगत जीवन में छोटे बदलाव। सतत विकास बड़े भाषणों से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, स्थानीय उत्पाद खरीदना, भोजन की बर्बादी रोकना, पेड़ लगाना इत्यादि। हर युवा अगर अपने जीवन में 5 बदलाव करे तो देश बदल सकता है। इन सभी के लिए युवाओं का स्वस्थ होना आवश्यक है, अतः उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वस्थ युवा ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। योग, व्यायाम, नशा मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। स्वास्थ्य ही धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। एक सुंदर पंक्ति है, धरती हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यही सतत विकास का मूल संदेश है। प्रिय श्रोताओं, भारत का भविष्य केवल सरकार की योजनाओं से नहीं बनेगा। भारत का भविष्य बनेगा जागरूक श्रोताओं से, जिम्मेदार नागरिकों से, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज से। आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला व्यक्ति नहीं है, वह परिवर्तन का वाहक है, वह समाधान का निर्माता है। अगर भारत का युवा सतत विकास को अपना लक्ष्य बना ले तो 2047 तक, जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि पर्यावरणीय महाशक्ति भी होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, मैं सतत जीवन जीऊंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे वार्ता भारत में युवा और सतत विकास, और वार्ताकार थे कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।
3: इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर।

दोस्तों, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी अगली चर्चा का विषय है अल्पसंख्यक कल्याण।

0: मैं युवाओं की भूमिका।
1: आद्य, कई बार समाज के कुछ वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की कमी के कारण मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
0: आज का युवा जागरूक है, शिक्षित है और तकनीक से जुड़ा हुआ है। अगर युवा चाहे तो ये समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल आद्या, युवा शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं, डिजिटल साक्षरता फैला सकते हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं।
0: सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएं और शिक्षा सहायता कार्यक्रम।
1: लेकिन जानकारी की कमी के कारण बहुत से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में हम युवा एक माध्यम बन सकते हैं जो सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाए।
0: और आज सोशल मीडिया का दौर है और अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये समाज में सकारात्मक सोच और भाईचारे का संदेश फैलाने का सबसे मजबूत माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल आद्या, युवाओं को चाहिए कि वे नफरत और भेदभाव फैलाने वाली बातों से दूर रहें और एकता, समानता और सद्भाव का संदेश दें।
0: जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा तभी देश मजबूत बनेगा।
1: और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हम युवा, क्योंकि युवाओं में नई सोच है, नई ऊर्जा है और समाज को बदलने का जज्बा है।
0: तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे।
1: दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम के अगले गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और जिसे आवाज दी है सचिन जिकर, राघव चैतन्य और वरुण।

0: दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, भारत में पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है? इसका सही उत्तर है भोपाल।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी है, जिसका सही उत्तर है राजस्थान। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आयुषी द्विवेदी को। फिर मिलेंगे नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम की पहली पेशकश है उमर मलिक की आवाज में।

यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18

0: प्रतिशत कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक और गाना अली हैदर की आवाज में।

0: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक गजल।

और इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

मेहरबान फिल्म का ये गाना है सोनू निगम और अनुराधा पौंडवाल की आवाजें, महेंद्र देहलवी के बोल, धुन है दिलीप सेन समीर सेन की।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और अब सुनिए फिल्म कच्चे धागे का गाना। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है नुसरत फतेह अली खान ने।

जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ, संपर्क करें।

0: 07582472000।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए कासिफ के बोल, फिल्म जोधा अकबर में स्वर संगीत ए आर रहमान का।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 MHz पर। शाम के 6:15 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं वार्ता जिसका विषय है आकाशवाणी के 9 दशकों से गूंजती भारत की आवाज। वार्ताकार हैं सलोनी शर्मा, शोधार्थी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर।
1: जब हम भारत के जनसंचार इतिहास की बात करते हैं तो कुछ माध्यम केवल तकनीक नहीं रह जाते, वे समय की स्मृति बन जाते हैं। आकाशवाणी भी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी आवाज जिसने आजादी की पहली सुबह सुनी, विभाजन का दर्द महसूस किया, युद्ध के दिनों में देश का मनोबल संभाला, गांवों तक जानकारी पहुंचाई, कलाकारों को पहचान दी और करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा केवल ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास नहीं है, यह भारत के सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक विकास, लोकतांत्रिक संवाद और सामूहिक स्मृतियों की भी कहानी है। भारत में रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। उस समय रेडियो टेक्नोलॉजी लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब लोगों ने पहली बार बिना किसी व्यक्ति को सामने से देखे उसकी आवाज सुनी होगी। हवा में तैरती हुई आवाजें लोगों को रोमांचित करती थी। सन 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया। इसके बाद कलकत्ता और मद्रास में भी रेडियो क्लब शुरू हुआ। फिर 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी जिसने ऑर्गेनाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत की, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण यह संस्था ज्यादा समय तक चल न सकी। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग को अपने नियंत्रण में लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की स्थापना हुई। फिर 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। बाद में यही ऑल इंडिया रेडियो भारतीय जनमानस में आकाशवाणी बन गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर में AIR को व्यवस्थित रूप देने में लायनेल फील्डिन की बड़ी भूमिका थी, जो इसके पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बने। उन्होंने भारतीय भाषाओं, भारतीय संगीत और भारतीय संवेदनाओं को ब्रॉडकास्टिंग में जगह देने पर जोर दिया। यह उस दौर में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडकास्टिंग को मुख्यतः प्रशासनिक माध्यम की तरह देखती थी। आकाशवाणी शब्द भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। माना जाता है कि इस शब्द को लोकप्रिय बनाने में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाद में 1957 में इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया। सच कहें तो ऑल इंडिया रेडियो एक संस्था का नाम था, लेकिन आकाशवाणी लोगों की भावनाओं का नाम बन गया। आज की पीढ़ी शायद यह सहजता से कल्पना भी ना कर सके कि एक ऐसा समय था जब पूरे गांव में केवल एक ही रेडियो सेट हुआ करता था। संध्या होते ही लोग चौपालों, डाकघरों अथवा किसी बड़े घर के आंगन में एकत्र होकर समाचार और कार्यक्रम सुना करते थे। उस दौर में रेडियो केवल सूचना प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि सामूहिक श्रवण संस्कृति और सामाजिक सहभागिता का जीवंत केंद्र था। लोग रेडियो को अकेले नहीं बल्कि एक साझा अनुभव की तरह सुना करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेडियो की भूमिका धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि ब्रॉडकास्टिंग पर अंग्रेजी शासन का नियंत्रण था, फिर भी लोग दुनिया और देश की घटनाओं से जुड़ने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रेडियो सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुका था। फिर आया 1947 का वर्ष। भारत का विभाजन केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, वह मानवीय त्रासदी भी थी। उस दौर में जब अफवाहें तेजी से फैल रही थी, तब रेडियो विश्वसनीय सूचना का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना। लाखों विस्थापित लोगों के लिए AIR के अनाउंसमेंट जीवन से जुड़ी जानकारी लेकर आती थी। और फिर 15 अगस्त 1947 की वह ऐतिहासिक रात जब जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, तब आकाशवाणी ने उस क्षण को पूरे देश तक पहुंचाया। सोचिए उस समय करोड़ों लोगों ने पहली बार स्वतंत्र भारत की आवाज रेडियो पर सुनी होगी। वह केवल एक भाषण नहीं था बल्कि स्वतंत्र भारत के जन्म का भावनात्मक उद्घोष था। स्वतंत्रता के समय भारत में AIR के केवल 6 मुख्य स्टेशन थे, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। दूर दराज इलाकों तक ट्रांसमीटर लगाए गए। रेडियो ने उन लोगों तक भी सूचना पहुंचाई जहां सड़कें तक नहीं पहुंची थी। आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता रही। यह समाचार भी थे, संगीत भी था, साहित्य भी था, लोक संस्कृति भी थी और जन जागरूकता भी थी। लेकिन अगर भारतीय रेडियो इतिहास की बात करें और विविध भारती का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। 1950 के दशक में एक दिलचस्प स्थिति थी। उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बीवी केसकर फिल्मी गीतों को लेकर बहुत उत्साही नहीं थे। उनका मानना था कि रेडियो पर शास्त्रीय संगीत और गंभीर सामग्री को अधिक स्थान मिलना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि AIR पर फिल्मी गीतों की संख्या कम होने लगी, लेकिन जनता को कुछ और ही पसंद था। फलस्वरूप श्रोता बड़ी संख्या में रेडियो सिलोन की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि वहां हिंदी फिल्मी संगीत को पर्याप्त स्थान दिया जाता था। यह स्थिति आकाशवाणी के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रसारण संबंधी चुनौती बन गई। इसी परिपेक्ष में वर्ष 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य लोकप्रिय संगीत के माध्यम से श्रोताओं के साथ पुनः व्यापक जुड़ाव स्थापित करना था। इसके बाद भारतीय रेडियो प्रसारण का एक ऐसा दौर आरंभ हुआ जिसे आज भी रेडियो का स्वर्णिम काल कहा जाता है। छाया गीत, हवा महल, संगीत सरिता, जयमाला और बाद में विनिका गीतमाला जैसे कार्यक्रम केवल लोकप्रिय प्रसारण नहीं रहे, बल्कि भारतीय जनजीवन और सांस्कृतिक स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा बन गए। उस समय श्रोता अपने प्रिय कार्यक्रम के प्रसारण के समय के अनुसार अपनी दिनचर्या तक निर्धारित किया करते थे। विशेष रूप से जयमाला केवल एक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सीमाओं पर तैनात सैनिकों और देश के नागरिकों के बीच भावनात्मक सेतु का कार्य करता था। जब प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री अथवा जनप्रिय हस्तियां सैनिकों के नाम संदेश और गीत प्रस्तुत करती थी, तब पूरा देश भावनात्मक रूप से उस अनुभव से जुड़ जाता था। आकाशवाणी ने भारतीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आज आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू सहित असंख्य महान कलाकारों और सार्वजनिक व्यक्तित्वों के दुर्लभ रिकॉर्डिंग सुरक्षित हैं। ये केवल ध्वनि संग्रह नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास की जीवित ध्वनियां हैं। आकाशवाणी की पहचान धुन भी अपने आप में प्रसारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी मूल धुन ऑस्ट्रियन संगीतकार वाल्टर कॉफमैन द्वारा तैयार की गई थी, जिसे आगे चलकर पंडित रविशंकर से भी जोड़ा गया। आज भी जैसे ही यह धुन सुनाई देती है, श्रोताओं के भीतर एक आत्मीय और विश्वासपूर्ण भाव स्वतः जाग उठता है। रेडियो नाटक की दुनिया भी भारतीय प्रसारण संस्कृति का अत्यंत समृद्ध अध्याय रही है। टेलीविजन के व्यापक होने से पहले लोग केवल ध्वनियों और आवाजों के माध्यम से कहानियों को महसूस करते थे। कदमों की आहट, बारिश की बूंदें, दरवाजे की दस्तक, पृष्ठभूमि संगीत और संवादों के उतार चढ़ाव के सहारे श्रोता के मन में कल्पना का एक संपूर्ण दुनिया निर्मित हो जाती थी। यही कारण है कि रेडियो को अक्सर मन का रंगमंच कहा जाता है, क्योंकि यह दृश्य नहीं दिखाता बल्कि श्रोता की कल्पना में दृश्य रचता है। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान रेडियो राष्ट्रीय एकता और जनविश्वास का सबसे प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा। युद्ध से जुड़े समाचार, सरकारी संदेश और देशभक्ति गीत निरंतर लोगों तक पहुंचते रहे। उस समय टेलीविजन का प्रसार सीमित था, इसलिए देश की धड़कन सचमुच रेडियो की तरंगों पर सुनाई देती थी। 1969 में आकाशवाणी ने युवा वाणी सेवा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय प्रसारण में अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना था। यह अपने समय का अत्यंत प्रगतिशील प्रयास था, जिसके माध्यम से पहली बार युवाओं के विश्वविद्यालय जीवन, समकालीन चिंताएं और नई पीढ़ी की आकांक्षाएं राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने लगी। ग्रामीण भारत में भी आकाशवाणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। किसानों के लिए प्रसारित कृषि कार्यक्रमों ने खेती के तौर तरीकों में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया। मौसम, बीज, उर्वरक और वैज्ञानिक खेती से जुड़ी जानकारियां गांव-गांव तक पहुंच गईं। अनेक शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत के ग्रामीण आधुनिकीकरण और कृषि जागरूकता में रेडियो की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। दरअसल आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उसका विस्तृत प्रसारण नेटवर्क नहीं है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में सामूहिक श्रवण संस्कृति का निर्माण किया। करोड़ों लोगों ने एक ही समय पर एक ही आवाज सुनी। यही साझा श्रवण अनुभव राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जुड़ाव को सशक्त बनाता है। आज मीडिया का परिदृश्य अत्यंत खंडित हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल स्क्रीन तक सीमित होता जा रहा है और गणनात्मक प्रणालियां यह तय कर रही हैं कि हम क्या देखें और क्या सुनें। ऐसे समय में सार्वजनिक प्रसारण माध्यम की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल लोकप्रियता अर्जित करना नहीं बल्कि विश्वसनीय सूचना, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखना भी होता है। आकाशवाणी आज भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने मूल ध्येय वाक्य के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम बनी हुई है। इसकी पहुंच भारत के 99% से अधिक जनसंख्या और देश के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र तक है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बनाती है। समय के साथ आकाशवाणी ने स्वयं को निरंतर परिवर्तित किया है। आज रेडियो सुनने का स्वरूप भी बदल चुका है। अब यह आवश्यक नहीं कि रेडियो केवल रेडियो सेट पर ही सुना जाए। मोबाइल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ ऑन AIR जैसे अनुप्रयोगों ने

0: इसे वैश्विक स्तर पर कहीं भी कभी भी सुलभ बना दिया है। वहीं एफएम तकनीक ने श्रवण अनुभवों को अधिक प्रभावशाली तथा आत्मीय बनाया है। आकाशवाणी ने केवल कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया बल्कि पीढ़ियों को अभिव्यक्ति दी। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, लोक संगीत और लोक भाषाओं को संरक्षित किया, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आकाशवाणी ने भारत को सुनना सिखाया। तकनीक और माध्यम समय के साथ बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक समाज को विश्वसनीय आवाजें, संवेदनशील संवाद और सांस्कृतिक स्मृतियों की आवश्यकता रहेगी, तब तक आकाशवाणी की प्रासंगिकता बनी रहेगी। और शायद यही आकाशवाणी की सबसे बड़ी सफलता है कि 90 वर्ष बाद भी यह केवल रेडियो नेटवर्क नहीं बल्कि भारत की सामूहिक स्मृति की जीवित आवाज है।
1: अभी आपने सुनी आकाशवाणी सागर 102.6 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति के अंतर्गत विशेष वार्ता। आकाशवाणी 9 दशकों से गूंजती भारत की आवाज। वार्ताकार थी सलोनी शर्मा, शोधार्थी डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर।
2: अरे काय भैया, ये सब मोह लटकाए काय को दिए थे?
3: अब का बताएं भज्जा तुमके, कोनो ये कहु परेशानी हो तो बतावे, ये तो राम भाई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
2: अरे भैया ये सब का होगा, किछु तो बताओ।
3: अब तुम्हें का बताएं भज्जा, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहू ये खोजा परेशानी, कहू वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
2: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगा थे, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
3: अच्छा अच्छा
2: हाँ। हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20। हाँ, हाँ। और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845।
3: और सीधा लगा के कछु वो करना पड़े,
2: बड़े समझदार हो। हाँ। इमे कोड नंबर भी लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया। हाँ। सागर

0: नो सात।
1: एक बीर फिर से बता दे भैया।
0: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। नो सात सात शून्य चार तीन दो दो नौ सात।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा। हाँ। ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें।

0: का व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार गीत।

0: ना देखो।
1: ये सदाबहार गाना मोहम्मद रफी की आवाज में भी आपने सुना। फिल्म थी तीन देवियां। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: और अब सुन लेते हैं लूटमार फिल्म का ये सदाबहार गाना। आशा भोसले की आवाज है, अमित खन्ना के बोल, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं रफी और लता की आवाजों में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, जिसकी धुन तैयार की है मदन मोहन और जयदेव ने। फिल्म का नाम है लैला मजनू।

और इस गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है शाम के 6:45। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग में कुछ बुंदेली लोक गीत। ये पहला लोक गीत है नंदराम पटेल और उनके साथियों की आवाजों में।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम है तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अरे काय भैया, ये सब मुंह लटकाए काय को दिए थे?
7: अब कहा बताए भज्जा, तुमकी कोनो ये कहू परेशानी हो तो बतावे, ये तो राम भाई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
6: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
7: अब तो मैं का बताए भैया, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहू ये खोजा परेशानी, कहू वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
6: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगाते है, ओमे आउट है आकाशवाणी में एक से एक सुरिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
7: अच्छा अच्छा
6: हाँ। हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20।
7: हाँ।
6: और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845।
7: और सीधा लाख का कछु वो करना पड़े।
6: बड़े समझदार हो। हाँ। इमे कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया। सागर

0: एक बेर फिर से बता दे बच्चा।
1: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। 9-7-7-0-4-3-2-2-9-7।
0: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
1: अरे
0: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
1: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें। लगाओ हेलो किसान बाणी में फोन।
2: और अब आइए सुनते हैं ये एक और लोकगीत जयप्रकाश पटेरिया की आवाज में।
3: अरे कौन भरम में भूली, हाँ हाँ कौन भरम में भूली,

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारामैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है आकाशवाणी सागर। शाम के 7:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रम और आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले सुनिए कल के कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम विवरण होगा 6:25 पर। प्रातः 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। स्वर होगा लता मंगेशकर का। भूले बिसरे गीतों का वक्त होगा प्रातः 6:40। 6:55 पर संस्कृत में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुबह सुबह ये दैनिक कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 7:00। 7:05 पर कृषि संकेत। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। 7:20 पर सवेरे होंगे मनचाहे गीत और 7:45 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। समाचार प्रभात रिले करेंगे सुबह 8:00 दिल्ली से। लोक संगीत का वक्त होगा सवेरे

सवा आठ बजे और 8:30 बजे सुनिएगा रूपक, बरसो ज्योतिर्मय जीवन, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। जिले की चिट्ठी होगी 10 बजे भोपाल से। 10:05 पर सुनिएगा गुलदस्ता और 10:30 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। 11 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 11:30 से मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। दोपहर में 2 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण भोपाल से रिले किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार भोपाल से दोपहर में 2:10 पर और 2:15 पर दोपहर समाचार दिल्ली से रिले करेंगे। दिन में 2:30 बजे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले करेंगे। शाम 5 बजे इस घंटे की सुर्खियां कार्यक्रम सुनेंगे आप भोपाल से। भोपाल से ही रिले करेंगे युववाणी शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे। संगीत सरिता का वक्त होगा शाम 5:35। कल शाम 6 बजे मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले करेंगे। 6:30 बजे शाम को सदाबहार गीत होंगे। 6:45 पर सुनिएगा लोकरंग। 7 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली से। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से। लोकरंग सुनिएगा कल शाम 7:20 पर और शाम 7:30 बजे आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे ग्राम सभा। रात्रि 8 बजे कल चित्रपट संगीत होगा। रात्रि 8:20 पर सुनहरी यादें आकाशवाणी के 90 वर्ष। मेहमान होंगे महेंद्र कुमार त्रिवेदी, पूर्व निदेशक आकाशवाणी। इनसे भेंटवार्ता करेंगे जय शेखर। कल रात्रि 8:45 पर मनचाहे गीत होंगे और 9:30 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। और जब आप अब आज के शेष कार्यक्रम रात्रि 8 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत। 8:15 पर संगीत सरिता। रात्रि 8:30 पर भेंट वार्ता। माहवारी सुरक्षा दिवस विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता दुबे से बात करेंगे जय शेखर। मनचाहे गीत होंगे रात्रि 9 बजे। 9:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले करेंगे और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली से रिले करेंगे। शाम को 7:20 पर सुनिएगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 MHz पर। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के अस्थि कलश आज भोपाल से दिल्ली भेजे गए, सांची में दिया गया गॉड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के हर राज्य का कृषि रोड मैप बनेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्सव और उमंग के साथ मनाई गई और प्रदेश में भीषण गर्मी जारी। आज

0: 46 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और महामोदयान की पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में इन अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि
1: आज मॉर्निंग में ही जो भगवान शिष्य थे उनके पवित्र जो अस्थियां हैं दर्शन के लिए मंगोलिया ले जाने के संबंध में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि भी और साथ में ही जो हमारे यहाँ सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी उनके प्रतिनिधि सभी उपस्थित थे और उनकी सबकी उपस्थिति में आज पवित्र अस्थियों को इसको बाहर निकाला गया डबल लॉक से। और एक जो परंपरा यहाँ है जब भी पवित्र अस्थियां बाहर निकाली जाती हैं रिलिक्स बाहर आते हैं तो सबसे पहले जो स्थानीय स्तर पर दर्शन के लिए श्रद्धालु रहते हैं वो दर्शन करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
2: हर एक राज्य का हमें कृषि रोड मैप बनाना है। हर एक राज्य हम पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है, और उसके साथ साथ फसलवार भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर है, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के हित ऐसी है। लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं, उस पर कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी। संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने देश के हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पर गहन दुख जताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बद्र ने अपनी शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का

0: स्वागत है। देश सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। देवास जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धार में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन पहली बार सीबीएसई द्वारा ओएसएम प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया है कि
1: अभी आगे आने वाले मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अभी 2 दिनों के अंदर जो है वो सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जो है वो डे 1 के लिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जैसे जिलों के अंदर दिया गया है। साथ ही दतिया और भिंड जैसे जिलों के अंदर डे 1 के अंदर ऑरेंज हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डे 2 के अंदर भी हीट वेव जो है वो प्रदेश के जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट से हैं उसके ऊपर देखने को फिलहाल अभी मिलेगी। लेकिन साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने जा रहा है कल से, तो उसके होते हुए जो है वर्षा की गतिविधि हमारे प्रदेश के संभागों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। और कल जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो शिवपुर, मुरैना जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म का भी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म का 50-60 KMPA के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें सम्मिलित हैं। भारत कल कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल की ट्विसर शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 109 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में मध्य प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कटनी द्वारा नगरवासियों को निमित्त एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को शशि और
1: नीरज सोनी की
0: राम राम, राम। और नीरज भैया देखो बहुत ही बेजा गर्मी पड़ रही है और ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग हो गए हैं चाहे सरकार सभी ऐसी भीषण गर्मी से बचने की सलाह देते हैं।
1: बिल्कुल सासी गई
0: है सो कछु भैया सुझाव अपन भी अपने किसान भैया हरों को दे हैं। वैसे तो सभी अपने अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा करते हैं लेकिन भैया कछु चर्चा हो जाते है तो कछु बातें ध्यान में रहती हैं। और भैया आज है गुरुवार सो किसानों की खेती बाड़ी पशुधन बाग बगीचा से संबंधित समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम रहते हैं। हेलो किसान वाणी जी की रिकॉर्डिंग आज ही भई है माने हर गुरुवार दोपहर 1 बजे से होते हैं ना भैया।
1: बिल्कुल सांसी कही जी।
0: और हमारे किसान भैया बहने ध्यान से ई कार्यक्रम में फोन लगा के अपनी अपनी समस्याएं बता के स्टूडियो में पधारे विशेषज्ञों से सलाह परामर्श लेके खेती बाड़ी के कामों को आगे बढ़ाऊ थे।
1: बिल्कुल बिन्ना तो निश्चित रूप से अपनो आज को जो एक साप्ताहिक क्रम है हलू किसान वाणी वो तो अपन सुन ही मनो अपन कार्यक्रम के शुरू में जो है दिन दिवस जो खास रहा थे जो महान पुरुषों की जयंती पुण्यतिथि पड़ा थे उनके व्यक्तित्व पे भी चर्चा कर रहे थे। तो आज अपन चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक पत्रकार विजय सिंह पथिक जी की पुण्यतिथि कहानी तो इनके व्यक्तित्व को जानत है।
0: बिल्कुल भैया।
1: भैया रो आपको वास्तविक नाम भूप सिंह थू। आपको जन्म उत्तर प्रदेश की बुलंद शहर में भाव बे भैया रो रास बिहारी बोस के क्रांति आंदोलन से जुड़े थे। राजस्थान के ऐतिहासिक बिजोलिया किसान आंदोलन को सफल नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा करोगा तो
0: बिल्कुल
1: तो निश्चित रूप से ऐसी महान विभूति की पुण्यतिथि पे अपन सभी जन उनको सादर नमन करते।
0: बिल्कुल भैया। और भैया आज है महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती। इनको पूर्व नाम विनायक दामोदर सावरकर तो उनको जन्म महाराष्ट्र के नासिक भुगुर के में भाव तो साल 1904 में वीर सावरकर ने राष्ट्रवाद के प्रसार के लाने अभियान अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त संगठन बनाओ वे अखिल महासभा के अध्यक्ष रहे और हिंदुत्व की सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करो। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती पे अपन सभी सत सत नमन।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिन्ना। और जैसी कि आपने शुरुआत में कहती कि बीजा गर्मी चल रही है तो किसान भैया रो अपन अपने कार्यक्रम में तमाम विषयों की चर्चा करते हैं और हाजिर में जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसे कैसो का अपन को बचाव रखने हैं ये विषय पे भी हमारी बिन्ना जो है आपको कछु सलाह दे रही है कछु सुझाव दे रही है सो सुनो ध्यान से।
0: बिल्कुल भैया देखो जैसे कि अपन सभी जानते ही हैं कि खूब ही गर्मी में अपन को काका करूँ चाहिए तो पहली बात तो यही रहते हैं कि खूब ही मात्रा में अपन को पानी पीने हैं। और जैसे कि देखो गाँव के भैया बहने रहते हैं सो खूब ही मठा तो रहते ही उनके तो देखो मठा है सिकंजी है माने नींबू को पानी बना ले ORS घोल को सेवन करें। और सबसे बड़ी बात भैया जो है जो बाजारू चीजें रहती हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह और नशीली चीजें जो रहती हैं इन चीजों से अपने भैया दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। और भैया जैसे अपने मतलब सिर को मुड़ को बांधे रहे टोपी लगावे अच्छो गमछा से ढके रहे धूप में जा रहे हैं सो छाता को प्रयोग कर लेवे। इसके अलावा भी एक बात और रहता है अच्छे ढीले पतले हल्के रंग के सूती कपड़ा पहनने का है। और दूसरी बात जा है भैया कि अच्छो हल्को ताजो खाना खाने हैं तलो भुनो ये सब चीजें कम खाने हैं। और खूब वही देखो तरबूज खीरा जिस सभी चीजें खूब आई रही हैं ककड़ी खीरा आई रहे हैं तो इन सब चीजों को भी
1: हाँ
0: खूब वही अपने आहार में शामिल करने
1: का। और एक अलावा बिन्ना कहे ऐसी गर्मी में अगर कोई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिख रही है बेचैनी हो रही है या गर्मी से जुड़ी कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतने और अपन को अपने डॉक्टर को दिखाने।
0: बिल्कुल भैया। और एक बात और कहे कि जैसे अपने बाल बच्चा है सवेरे सवेरे तो बाहर मतलब खेल लेवे मगर जैसे ही देखो धूप चढ़ने लगे सो अपने बाल बच्चों को अपने घर के भीतर कर लेने कहो घर के भीतर ऐसे कछु खेलों ने बता देवे। अब जैसे अपन और सभी खेलत रहते छोटी में
1: हो।

0: मगर आजकल के तो जैसे मोड़ी मोड़ा मोबाइल ही में घुसे रहते हैं। सो इन सब चीज़ों से अपने बच्चन को बचाव करने हैं। ऐसी कौन चीजें बता दे, मैं लूडो है, अष्टाचंगा है, कुबे सांप सीढ़ी है, ऐसी चीजें अपने बैठ के आराम से खेलें, है ना। तो जी मैं उनके लाने नुकसानदायक ना हो भैया। दूसरी बात जा है, जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात मानने हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी अपनों और अपने होवे वाले बच्चा को खूब ध्यान रखने कहा, है ना, कि खूब पानी पीने हैं और अच्छो आहार लेने हैं, संतुलित भोजन करने हैं, जिसे अपनो होवे वालो बच्चा भी स्वस्थ होवे और आपको भी कोनो तकलीफ ना होवे।
1: बिल्कुल शशि बिन्ना, और अब चर्चा को अपन थोड़ी देर को रोक रहे हैं, सुनत हैं जी कछु संदेश और फिर आते हैं अपने कार्यक्रम पे वापस।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों नमस्कार, सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे, समय सीमा 30 मई 2026 है।
4: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
1: कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हमारे किसान भैयाहरों को एक बार फिर स्वागत है संदेशों के बाद। और भैयाहरों, जैसे कि बात करी थी कि साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी आज के दिन रिकॉर्डेड होते हैं, सो आज जो भी रिकॉर्डिंग भई है सो हमारे भैयाहरें सुनवे जा साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी।

हेलो किसान वाणी कार्यक्रम से जुड़ रहे हमारे तमाम किसान श्रोता भैया बिन्नहरों को स्वागत कर रहे हैं हम अपने आज के इस साप्ताहिक क्रम में। किसान भैयाहरों, आज दिन गुरुवार को अपना जो साप्ताहिक क्रम रहा थे वो आपकी समस्याओं के समाधान को दिन रहा।

0: है, खेती किसानी, पशुपालन, बागवानी, इन सब में जो भी समय समय पे समस्याएं आते हैं, न केवल उनकी समाधान बल्कि किसानी बागवानी और पशुपालन में नवाचार से जुड़ी जानकारी भी हम अपने इस सप्ताह क्रम में आप किसान भैयारों तक पहुंचाते हैं। और इन सब जानकारियों के लाने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारत हैं। आज के अपने साप्ताहिक क्रम में भी विशेषज्ञ पधार चुके हैं, श्री जीपी विश्वकर्मा जी पधारे हैं, जो पूर्व कृषि अधिकारी रहे हैं कृषि विभाग सागर में। डॉक्टर नीलेश शाह जी पधारे हैं, जो उप संचालक हैं पशु चिकित्सा विभाग सागर में। विश्वकर्मा जी, डॉक्टर शाह साहब, आपको हम खूब ही खूब स्वागत कर रहे हैं। हमारे तमाम किसान श्रोता भैया हरें हमसे जुड़ के अपनी समस्याओं के समाधान के लाने बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्कार भैया, अपना परिचय हम तक पहुंचा दूं।
1: सत्यपाल जी बोल रहे हैं, क्या से?
0: सत्यपाल भैया, स्वागत है आपको, सुनाओ क्या चल रहा है? अब यार देखो, गर्मी को तो ऐसा है, गर्मी ज्यादा हुई है तभी तो पानी बढ़ गया गिर है।
1: और क्या, हवा चल रही बहुत गर्म।
0: और सुनाओ क्या चल रहा हो किसानी में?
1: अरे सर, वो कहा है बादरे से है।
0: हाँ, क्या जानकारी चाहत हो कार्यक्रम में?
1: सर अपन को बस कह रहे की खेत तैयार करने हैं, तो करें।
0: चलो, बहुत उपयोगी जानकारी आप चाहत हो और आपको जानकारी अपने स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से।
2: हाँ भैया, खरीफ का सीजन अब थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाला है, इसके पहले भी आप खेतों में पहले अच्छी गहरी जुताई कर लें, खेतों की मरम्मत कर लें, खेतों को बढ़िया तैयार कर लें, और जो आपके पास स्टॉप डैम है, कुआ है, तालाब है या सिंचाई के साधन है, उनकी मरम्मत कर लें, उनके गहरीकरण का कार्य कर लें, और ये भी देख लें खेत जो हमारे अभी तक रबी सीजन के पड़े हुए थे उनमें क्या बखन्नी की कि नहीं की, नहीं तो अच्छी गर्मी पड़ रही है इस समय, आप जो है इसकी खन्नी करके डाल दें, और जहां 3 सालों से गहरी जुताई नहीं की है उन खेतों में जुताई कर दें। अब बात आती है खरीफ मौसम की तैयारी की, तो पहले ये देख लें कि खरीफ में हमें कहां कहां कौन कौन सी फसल लगानी है, उसके हिसाब से खेतों का चयन कर लें, उपजाऊ, कम उपजाऊ, अधिक उपजाऊ, इस तरह से उनमें बांट करके और फसल के हिसाब से, किस्म के हिसाब से इनको आप जो है खेतों का चयन कर लें। तो ये देख लें कि बीज हमारे पास है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हम फिर बीज निगम से या कृषि विभाग से संस्थाओं से, और खाद की भी आप जो है व्यवस्था कर लें, उसके लिए कितना खाद लगेगा उसके लिए आप पहले से डिमांड भेज दें और अपना बुक कर लें, ठीक है ना। उस तरह से हम अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर से हम समय पर, जैसे ही पानी गिरेगा, 3-4 इंच के लगभग पानी जब गिर जाता है तो हम खरीफ मौसम में बुआई कर सकते हैं।
0: ठीक है सतपाल भैया, तो ऐसे ही जुड़े रहो आकाशवाणी से और सबको जुड़े रहो। सतपाल भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
3: हेलो,
0: स्वागत कर रहे साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में आपको।
3: जी हाँ, नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, अपना परिचय पहुंचा दूं हम तक।
3: ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से गोलू हर बार बात कर रहा हूँ सर जी।
0: गोलू भैया, सुनाओ क्या चल रहा है?
3: डॉक्टर से जानकारी लेना चाहते हैं। गाय है ना सर जी, तो 8 दिन से सर जी बैठ गई, वो खड़ी नहीं हो पा रही है।
0: गाय 8 दिन से बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है।
3: हाँ, खड़ी नहीं हो पा रही है सर जी।
0: चलो लियो जानकारी आपको डॉक्टर साहब।
3: नमस्ते सर
4: जी। नमस्कार, तो थोड़ा ये बताएं कि अभी उसकी मतलब ब्याई तो नहीं है अभी गाय?
3: अभी सर ब्याई नहीं, मगर पहले की बात बता रहे, 4 बार पहले ब्याह चुकी है।
4: नहीं, वो ठीक है, तो ये अचानक से कैसे बैठ गए, मतलब ऐसा क्या हुआ था कि कोई बीमारी होती उसके बाद बैठती है गाय?
3: बीमारी नहीं, वो चलते चलते वो बैठ गया, वो खड़ी नहीं हो पा रही है।
4: हाँ, चराई कैसी है, चर रही क्या?
3: हाँ, तो उसको भूसा रख दिए थे तो बैठे बैठे से चल लेती सर जी, और पानी आने पी लेती, मगर वो खड़ी नहीं हो पा रही है।
4: सामान्य तौर पर तो ये स्थिति नहीं बनती है जब तक कि कोई विशेष बीमारी ना हो, फिर भी हम आपको थोड़ा सा इसमें प्राथमिक उपचार आप क्या कर सकते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, अन्यथा आपको तो एक किसी विशेषज्ञ को ही दिखाना पड़ेगा। तो एक तो अगर वो 8 दिन से नहीं उठी है तो आप पहला प्रयास तो उसको उठाने का करें, कि कैसे भी हो 3 लोग 4 लोग मिलकर डंडों की सहायता से कैसे भी उसको उठा के खड़ा करें, क्योंकि गाय या भैंस अगर लंबे समय तक बैठी रहती है तो फिर आगे उठने में समस्या होती है। थोड़ी देर उसको खड़ा रखें, सहारे के साथ खड़ा रखें, है ना। बहुत सारे देसी तरीके रहते हैं कि उसको नीचे फट्टा लगा के उसको उठाएं, और फट्टे को ऊपर अगर कोई पोल है या खंबा है या राड

0: उससे बांध दें ताकि उसका पांव भी टिका रहे और बैठे ना। इकट्ठा बहुत ज्यादा देर को नहीं करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उसको उठाते रहें। दूसरा, उसके पोषण का स्तर का हमें बहुत ध्यान रखना है कि उसको आप हरा चारा दें, अगर हरा चारा उपलब्ध है दाना उसको खिलाएं। और ये जो वजह हो सकती है कैल्शियम की कमी के कारण हो सकती है, तो इसमें मार्केट में ओरल कैल्शियम आते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में आप कैल्शियम पिलाएं उसको। मल्टीविटामिन्स मतलब लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, ये आपको देना पड़ेंगे। और इसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर आप दें, मिनरल मिक्सचर मतलब खनिज मिश्रण जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कोई अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर उपयोग में लाएं और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दें। साथ में उसको पानी रेगुलर पिलाएं और कोशिश करें कि अब ये उठ नहीं पा रही है तो हो सकता है उसका एनर्जी का लेवल कम हो, तो थोड़ा थोड़ा गुड़ भी उसको सुबह शाम आप दें। उसको आप बीच बीच में खड़ा करना पड़ेगा, और बेहतर यही है कि जो मैंने अभी प्राथमिक उपचार बताया ये तो करा लें, वो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को देख लें कि उसकी मूल वजह क्या है, और जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो सावधानियां बरतें।
1: जी गोलू भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया रो हेलो किसान वाणी में आप किसान श्रोता भैया बिन्नाहरों की समस्याओं के समाधान लगातार जारी रहने हैं। ये बीच में मनोरंजन को होगा समय से एक बहुत ही प्यारो सो लोक भजन सुन रहे हैं नत्थू सिंह और इनके संगी साथियों को गाँव भाव।

0: हेलो
1: हेलो भैया, जयराम जी।
0: जयराम जी भैया स्वागत कर रहे हैं हेलो किसान वाणी में आपको।
1: अरे हम संजू अहरवार बोल रहे प्रकट से।
0: संजू भैया का समस्या ले आए?
1: भैया समस्या ले आया तो बीज की जानकारी चाहने थी, कौन सा बीज की जानकारी सोयाबीन की अच्छी उन्नत को बीज।
0: बिल्कुल बहुत उपयोगी जानकारी है, आगामी तैयारी को ध्यान में रखत भाई। और विषय पे आपको जानकारी अपने स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी आपको दे रहे हैं, सुनो ध्यान से।
2: अभी क्या है, आप अच्छी गहरी जुताई कर लें तो बीज में बहुत से बीज हैं। आपको खरीफ में सोयाबीन बोना है, मूंग बोना है, उड़द बोना है, मक्का बोना है, ज्वार बोना है, अरहर बोना है, रमतल है, तिल है, उनके लिए उन्नत बीज बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे सोयाबीन में GS 2034 है, GS 2029 है, RBS 4 है, RBS 2004 है, 2069 है, यानी कई किस्में हैं जो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएं, जो रोग निरोधी हों, अच्छी उपज देने वाली हों, उनका चयन करें और बीज उपचार जरूर करें। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को आप पहले से अगर जुटा लेते हैं तो निश्चित तौर से समय पर आप खरीफ की बुवाई कर सकते हैं।
0: जी जी जी संजू भैया।
1: जी भैया, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद। आकाशवाणी सागर से आप जुड़े संजू भैया। हेलो
3: हेलो किसान वाणी।
0: बिल्कुल सही जगह फोन लगो, आपको स्वागत कर रहे हैं और आपको परिचय चाहते हैं।
3: जी सर, लक्ष्मण सिंह बात कर रहा हूँ सर, ग्राम बोतराज तहसील पथरिया जिला दमोह।
0: लक्ष्मण भैया सुनाओ, का जानकारी चाहत हो?
3: सर हमें पशु के बारे में जानकारी चाहिए।
0: बिल्कुल मिले आपको पशुओं के बारे में जानकारी, बताओ का समस्या है?
3: सर एक अपनी गाय है, वो खिलाने गोबर मतलब रख तैयार हुआ सर।
0: अच्छा चलो, आपको इस विषय पे बहुत उपयोगी जानकारी डॉक्टर नीलेश शाह जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से।
3: जी सर नमस्कार सर।
4: अगर गोबर के साथ में ब्लड आ रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि उसमें आंतरिक कृमि हो उस पशु में, तो आपको इसके लिए कृमिनाशक दवाइयां देनी रहती हैं। तो आपने दी है क्या इसके पहले कृमिनाशक दवाई?
3: नहीं सर, अभी 2 दिन हुए सर।
4: हाँ ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आती हैं, कुछ जेनेरिक नेम मैं बता सकता हूँ आपको कि आइवरमेक्टिन है, कृमिनाशक दवाई एल्बेंड्राजॉल है ना, ये आप निर्धारित डोज में अगर देते हैं तो जैसे कि आइवरमेक्टिन है 80 मिलीग्राम की एक टेबलेट आती है वो दे सकते हैं, वो उपलब्ध नहीं है तो दूसरा जेनेरिक ड्रग है एल्बेंड्राजॉल, इसका करीब 1.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक का बोला साता है, वो दे सकते हैं। शुरुआत में तो आप यही दीजिएगा और इसके बाद भी अगर ब्लड नहीं बंद होता है तो हमको फिर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इसके लिए हमारे विभाग की एक चलित पशु चिकित्सा सेवा भी चलती है जिसका टोल फ्री नंबर 1962 है। अगर आप इस पर फोन लगाते हैं तो विशेषज्ञ डॉक्टर आपके यहाँ आकर पशु को ट्रीटमेंट कर देंगे। बाकी शुरुआती रूप से आप अगर ये दे रहे हैं, थोड़ा खाने में आप ध्यान रखिएगा कि हरा चारा दीजिएगा, भूसा की मात्रा आप बहुत ज़्यादा अभी ना दें क्योंकि अभी अगर उसको ब्लड आ रहा है तो मुझे लगता है कि अगर कृमि की वजह से है तो इन दवाइयों से ये नियंत्रित हो जाएगा।
0: जी लक्ष्मण भैया।
3: जी सर।
0: जानकारी से पूरी संतुष्टि है?
3: बिल्कुल सर।
0: ऐसे ही जुड़े रहने आकाशवाणी सागर से, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भाई आपको। हेलो
5: हेलो,
0: स्वागत कर रहे भैया आपको हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में।
5: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, बोलो अपना परिचय दे दो।
5: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं गोकुल ग्राम परसौंत से।
0: जी भागचंद भैया।
5: हाँ बिल्कुल सर, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया, आप भी कुशल हुई हमें आशा है, और अपनी समस्या हम तक पहुँचा दो।
5: बिल्कुल सर, हम जी कह रहे थे जैसे अभी उड़द की किस्में जानना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
5: वो हमें पूछना हो सोयाबीन की किस्म है।
0: उड़द और सोयाबीन की बोनी करो चाह रहे हो, बहुत समय पे
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जानकारी ले रहे हो, और आपको इस विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी श्री जीपी विश्वकर्मा जी जो अपने स्टूडियो में पधारे हैं आपको दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से।
5: नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, आप पहले से ही चिंतित है खरीफ के लिए।
5: बिल्कुल,
2: देखिए बाजार में बहुत सारी किस्में हैं और अपन को ऐसी किस्म चुनना है जो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी हो। जैसे GS 335 पुरानी वैरायटी है लेकिन पैदावार हमें भरोसे की देती है नहीं? ऐसी ही कई वैरायटी बहुत सी आ गई हैं, जैसे आपकी GS 2029 है, GS 9560 है, NRC 89 है, ये सोयाबीन की किस्में हैं, GS 2034 है, RBS 2000

0: ठीक है ना भैया?
1: बिल्कुल सर। हाँ
2: ठीक बात चंद भैया।
1: हाँ बिल्कुल सर,
2: जानकारी से पूरी संतुष्टि का हाई।
1: बिल्कुल सर, पहुंच चुकी है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद भैया। ऐसे ही जुड़े रहियो आकाशवाणी सागर से। भैया रो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया बिन्नाहरो से जुड़ के आपकी समस्याओं के समाधान हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे। ये बीच में समय होगा मनोरंजन को। मनोरंजन के लाने एक बहुत ही प्यारो सो बारामासी लोक गीत हम आपको लेके आए हैं। देवकी नंदन शकवार और इनके संगी साथियों को गाओ भाव, आओ सुनते हैं।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी नमस्ते।
0: नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं हेलो किसान वाणी में आपको। अपना परिचय दे दो।
1: सर जी विजय उपाध्याय, ग्राम सतपाला, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोल रहे। सर
0: विजय भैया सुनाओ, क्या चल रहा है, क्या जानकारी चाहते
1: हैं? सर हमें दो प्रकार को बीज रखे हैं, अगर जो सही न हो तो वैज्ञानिक लोग बतावे तो दूसरों खरीद ले।
0: जी तो पहले बताएं काहे को बीज रखे हो?
1: हम बीज रखे सर 21-17
0: सोयाबीन में।
1: जी हाँ सोयाबीन।
0: जी और
1: दूसरा रखे था 55-60 का, जो सही है बीज तो रखे, अगर दूसरों खरीद ले तो बतावे वैज्ञानिक।
0: चलो आपको जानकारी श्री
2: भैया JS है, ये सभी JS है, मतलब है जी ऐसे 21-17 है, और जी आप रखे हो जी उन्नत ही किस्में हैं, मगर आप कब से रखे हो इनको, कैसा
1: साल? पिछले साल
2: लिया था क्या आपने
1: सोसाइटी? पिछले साल खरीदा था। हाँ,
2: अच्छा प्रमाणित बीज था है नी?
1: हाँ।
2: कहाँ से खरीदा था?
1: सर जी अपने ये किसानों से।
2: किसानों से प्रमाणित नहीं कर सकते कि

0: कितना साल पुराना बीज है, इसलिए अगर हो सके तो आप जो है जो बीज बनाती हैं संस्थाएं, बीज निगम है, कृषि विभाग है, आपकी सोसाइटी है, बीज उत्पादक समितियां हैं, इनसे अगर बीज खरीदते हो तो उसमें टैग लगा रहता है कि ये सर्टिफाइड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा बीज है। आपको फाउंडेशन सीड भी मिल जाता है भमौरी प्रक्षेत्र से। तो अगर आप एक साल नया बीज खरीद करके बोएं तो 3 साल तक फिर आपको कुछ जरूरत नहीं। किसानों के बीज की कोई गारंटी नहीं दे सकते, उसमें आपकी कई किस्में मिली भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर बीज आपको वही बोना है, आप एक काम करो, 100 दाने दोनों वेराइटियों दोनों किस्मों के आप जूट के फट्टा को गीला करो और उस पर जो है जमा दो 48 घंटे तक, ठीक है ना। उसमें देखोगे जो आप पानी डालते रहना, सूख ना पाए फट्टा, और उसमें देखोगे कि उसमें जड़ नीचे जा रही है और ऊपर पौधा की अंकुरण होगा। तो ऐसे बीजों को छांट के देख लें कि 100 बीजों में अगर 70-80 बीज अच्छे हैं और 60 से कम है तो फिर हमें वो बीज का उपयोग नहीं करना है। हमें 70-80% जो 100 दानों में अगर 70 दाने जम रहे हैं तो हम एक सामान्य स्थिति में थोड़ा सा बीज का मात्रा बढ़ा देंगे और बो सकते हैं, ठीक है भैया।
1: ठीक है विजय भैया,
0: ठीक है ना,
1: धन्यवाद विजय भैया। ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी सागर।
2: जी सर, जी सर।
1: हेलो,
3: हेलो सर, किसान वाणी।
1: बिल्कुल सही जगह फोन लगो, किसान वाणी को साप्ताहिक क्रम है। हेलो किसान वाणी।
3: जी साहब, हम ग्राम परेठी तहसील सागर जिला सागर दामोदर रजक बोल रहे थे साहब।
1: दामोदर भैया सुनाओ, का चल रहा हूँ, का समस्या है किसानी में।
3: 8-10 आम के पेड़ लगाए थे।
1: हाँ,
3: तो ये सब पड़ ही रहे पिछले साल बसकारी में लगाए थे साहब।
1: पिछले साल बसकारी में आम लगाओ तो बढ़ नहीं रहो है। चलो आपको जानकारी श्री विश्वकर्मा जी दे रहे हैं। सुनो
0: रजक साहब, आपने बीज पौधे लगाए हैं कि आपने उद्यान की से खरीदे थे।
3: जैसे
1: अच्छा, नायमा जो उग जाते हैं गोइयों से।
0: अच्छा, वही बात है। आपने हाँ इतने होते जमे आए हुई है, उन्हीं को वहाँ बेह दो है, नहीं उन्हीं को लगा दो। अब उसकी गारंटी नहीं है भैया, कौन किस्म है नहीं। ये मैं किसान को निवेदन करेंगे और उचित सलाह ये देंगे कि आप उद्यान की विभाग जाइए, पर्याप्त मात्रा में कम कीमत पर अच्छे पौधे जो 4-5 साल के अंदर, कई तो दूसरे साल पौधा जो है फल देने लगता है नहीं, आम का, क्योंकि वे ग्राफ्टेड बडेड पौधे होते हैं, ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। इनको जो है आप अगर लगाते हैं तो कई किस्में बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं, है मालदा है, चौंसा है, कई और वैरायटी हैं, उनको आप जो है लगाएं। और ये इधर उधर के पौधे लगाएंगे तो उनकी कोई गारंटी नहीं, तो इसलिए आप जो है ज्यादा ना लगा के 2-3 पौधे 4 ले आओ उद्यान की से, और अच्छी किस्म के जल्दी फल देना लगती है।
1: भैया अभी समय है, चाहो तो बस करो, अभी में टाइम है, सो नई तैयारी भी लगा डारो, ठीक है दामोदर भैया।
3: जी साहब,
1: बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर भैया, ऐसे ही जुड़े रहियो आकाशवाणी सागर से। तो भैया रो जो है तो आज को अपनो साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी। आज के अपने इस साप्ताहिक क्रम में विशेषज्ञ के रूप में श्री जीपी विश्वकर्मा जी पधारे थे, जो पूर्व कृषि अधिकारी रहे हैं कृषि विभाग सागर में। डॉक्टर नीलेश शाह जी पधारे थे, जो उप संचालक हैं पशु चिकित्सा विभाग सागर में। विश्वकर्मा जी शाह साहब आप हमारे स्टूडियो में पधारे। हमारे किसान श्रोता भैया बिन्नहरों की किसानी पशुपालन बागवानी से जुड़ी भाई जो भी समस्याएं हती उनके बहुत ही उम्दा से उपयोगी से समाधान आपके माध्यम से उन तक पहुंची। संगे संगे किसानी पशुपालन बागवानी में नई से नई जानकारी नवाचार से जुड़ी भाई और आगामी किसानी पशुपालन बागवानी के जो कारज है उनसे जुड़ी भाई जानकारी भी संगे संगे उनको प्राप्त भई के लाने आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। भैया हरो आज के अपने साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी की प्रस्तुति और संयोजन हतु दीपक निषाद को। कार्यक्रम में आप तमाम श्रोता भैया बिन्नहरो से बुंदेली में बतकाव कर रहे थे हम नीरज सोनी, और अपने ये कार्यक्रम को आप किसान श्रोता भैया बिन्नहरो तक पहुंचा भी हमारे तकनीकी सहयोगी रहे देवेश पांडे। तो भैया हरो आज को अपनो साप्ताहिक क्रम अभी तय संपन्न हो रहो, सभी जनों से ले रहे हैं आज्ञा, कह रहे हैं जय राम जी की।

0: कार्यक्रम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, और अब बिना कार्यक्रम के आखिर में अपन पहुंच जाएं जानकारी के क्रम पे।
0: बिल्कुल भैया, तो आज को मंडी भाव बता दे रहे हैं अपने किसान भैयाओं को। गेहूं रहो है 2280 से 2750 रुपये प्रति क्विंटल, चना रहो है 3900 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल, और सोयाबीन रहो है 4400 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल, राई सरसों 5400 से 7700 रुपये प्रति क्विंटल,
1: और मक्का को भाव रहो है 1580 से 1720 रुपये प्रति क्विंटल। और अब किसान भैया हरो, मौसम की जानकारी में आज को अधिकतम तापमान रहो 45.05 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहो 30.4 डिग्री सेल्सियस। अगर नमी की बात करें तो भुंसरा की नमी रही 32% और दिंडुबे की रही 21%। तो बिना अब एक पहले के अपन कार्यक्रम समाप्त करें, आपने तो चर्चा में शुरुआत ही में हमारे तमाम किसान श्रोता भैया बिना हरों को हाजिर के मौसम यानी भीषण गर्मी से बचाव के उपाय बता दे थे।
0: बिल्कुल भैया,
1: हम चलत चलत एक बार फिर कहे हैं किसान भैया हरों कि ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ तक हो सके दोपहर में 11 बजे से दिन डूबे के 5 बजे तक लगभग अपन को घर ही में रहने हैं। अगर कोई जरूरी काम है तो जो जो कछु आज हमारी शशि बिन्ना ने बताई थी कि गमछा डाल के या पर्याप्त प्रबंध करके अपन को घर के बाहर निकलने हैं, इन बातों को ध्यान रखने हैं। अपने जो पालतू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनको ख्याल रखने हैं और आगामी बोने की जो तैयारी है उखो मन तक करते ही रहने हैं।
0: और भैया जैसे कि आज हेलो किसान वाणी कार्यक्रम अपने किसान भैयाओं ने सुनो, सो कछु किसान भैयाओं सोच रही हैं कि हम सोई लगाएं फोन, तो अपन उन्हें ध्यान दिला देवे कि हर गुरुवार को दोपहर के 1 बजे से फोन आप लगा सका। तो फोन नंबर बता दे भी अपन 240 845, और सागर को एसटीडी कोड नंबर कहलाओ 075582। समय को विशेष ध्यान रखें, हर गुरुवार दोपहर 1 बजे।
1: बिल्कुल बिन्ना, और अब किसान वाणी कार्यक्रम को समय होगा भैया रो तई पूरो सु सभी जनों से ले रहे हैं आज्ञा, कह रहे हैं
0: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
2: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

अभी आपने सुना खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.6 MHz पर, रात्रि के 8 बजे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कलयुग फिल्म का ये गाना है, आवाज है राहत फतेह अली खान की।

0: राहत फतेह अली खान की आवाज थी, फिल्म का नाम था कलयुग। फैसल रफी के बोल और रोहेल हयात के धुन इस गाने में थी।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर GST की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गाना फिल्म सांवरिया से। आवाज साहिल हड़ा की है, समीर के बोल, धुन मोंटी शर्मा ने बनाई है।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म मर्डर का गाना, अलीशा चिनॉय की आवाज है, राहत इंदौरी के बोल हैं, धुन बनाई है

और इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम संगीत सरिता का। तो पेश है कार्यक्रम की पहली पेशकश, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में यह गजल।

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती है, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
3: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 तक।

0: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक व उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और अब संगीत सरिता में आइए सुनते हैं कतील सिफाई का कलाम तलत अजीज की आवाज़ में।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता दुबे से, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जय शेखर। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं एक ऐसे विषय को लेकर जिस विषय को हमारे यहां कुछ छुपा छुपा कर बोला जाता है, अनदेखा किया जाता है, और उस अनदेखी के चलते, उस छुपा छुपाने के चक्कर में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो आम महिलाओं और खासतौर से युवा लड़कियों को, जो किशोर वय लड़कियां होती हैं, उनके लिए इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की इस बातचीत में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। माहवारी और माहवारी से जुड़ी हुई सावधानी, इन चीजों को लेकर हाजिर हैं डॉक्टर स्मिता दुबे जी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
1: पीरियड या माहवारी होती क्या है?
2: देखिए, हर महीने पीरियड्स जो हैं, वो जो बच्चेदानी होती है वो हर महीने तैयार करती है अपने आप को। अगर मान लीजिए बच्चा आके रुकता है, तो हर महीने उसके बॉडी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उसमें तैयार करती है, ताकि अगर बच्चा आके रुकता है तो वो बच्चे को पोषण दे पाए। लेकिन वहीं अगर प्रेगनेंसी बच्चा नहीं रुकता है, तो वो जो अंदर की परत होती है वो बाहर निकलती है, जिसको हम वो ब्लीडिंग के जरिए बाहर निकल जाती है। तो ये पूरे महीने जो है, ये एक प्रोसेस होती है। कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, कुछ कम होते हैं, और उस तरह से ये बॉडी में पीरियड्स होते हैं।
1: अच्छा अच्छा, पहले तो एक निश्चित उम्र हुआ करती थी, एक 14-15 वर्ष के ऊपर से ही लड़कियों को ये हुआ करता था। आजकल क्या कारण है कि बहुत जल्दी जल्दी ये शुरू हो जाते हैं पीरियड्स?
2: हाँ, आजकल पहले जो हम लोग ऑन एवरेज जो हम लोग पीरियड स्टार्ट होने की डेट्स लेते हैं, वो 10 से 15 साल लेते हैं
1: जी।
2: पहले 12 औसतन 13 साल में होते थे एवरेज अभी भी, लेकिन आजकल बहुत सारी गर्ल्स को 9 to 10 ईयर्स में भी पीरियड्स आ जाते हैं। तो हम लोग 10 ईयर्स को भी नॉर्मल ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि लड़कियों का न्यूट्रिशन इंप्रूव हो गया है विद एजुकेशन। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स जल्दी आते हैं तो आपकी हाइट पे भी फर्क पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो लेकिन क्या होता है, उसको डिले करने के लिए भी हम लोगों को फिर हार्मोन्स देने पड़ते हैं, तो दोनों चीजों का बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर 10 ईयर्स हम लोग आजकल 10 ईयर्स हम लोग एवरेज ले लेते हैं कि अगर 10 ईयर्स के पहले आ रहे हैं पीरियड्स, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेकिन अगर 10 ईयर्स के बाद आ रहे हैं या 15 साल तक नहीं आए हैं, तो आपको डॉक्टर को सलाह कंसल्ट करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को बहुत परेशानी होती है, कई लड़कियों को, और कई लड़कियों को ये बड़े आसानी से हो जाता है, तो इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? पेट दर्द होता है, हाथ पैर दर्द होते हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं।
2: पीरियड्स जो होते हैं उसमें, मैंने आपको पहले भी बताया, हार्मोन्स का अप एंड डाउन होता है। ईस्ट्रोजन आता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन आता है, फिर दोनों विड्रॉ होते हैं। तो जब बॉडी से हार्मोन्स विड्रॉ होते हैं, उस टाइम पे एक चिड़चिड़ापन, एक खालीपन, ये इस तरह का होता है। कई लोग उसको अच्छे से ले लेते हैं, कई लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है पीरियड्स के साथ में। तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वहां बच्चा नहीं रुका और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ब्लड को निकालने के लिए कुछ हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होते हैं, जिसके कारण पेन महसूस होता है। अगर ये पेन जो है किसी महिला को, लड़की को थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है, कि आप गर्म पानी की सिकाई कर लें और थोड़े मोड़े पेन की मेडिकेशंस वगैरह से आपका काम चल जा रहा है,
1: तो कई बार कोई कहता है कि चाय पी लेने से भी थोड़ा सा पेन में कमी आती है, ऐसा कुछ?
2: चाय आप ले सकते हैं, नींबू पानी के साथ में लें, हनी के साथ में लें, उससे फायदा होता है। हॉट वाटर फोमेंटेशन कर लें, लिक्विड्स काफी, अपना तरल पदार्थ काफी आपको लेना है, डाइट पे ध्यान देना है आपको, प्रोटीन्स ज्यादा लें, है ना, और ये जो आजकल फास्ट फूड है, ये सब अवॉइड करना है।
1: बिल्कुल, जहर है ये तो, हमें लगता है। अच्छा मैम, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि आज भी गांवों में, शहरों में, अगर किसी महिला को, किसी लड़की को अचानक से पीरियड आ जाते हैं और उसके पास समस्या आ जाती है कि भाई पैड नहीं है, तो वो जिम में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तो उनको बहुत सारी संकोच का सामना करती हैं। वो किसी साथी से नहीं कह पाती हैं, परेशान होती रहती हैं, कई बार इसी कारण उनकी तबीयत भी खराब हो जाती। तो इसको कैसे एक सहज विषय बनाया जाए?
2: देखिए, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना ज्यादा लड़कियों को ये अपने पहले से ये नॉलेज होना जरूरी है। हाँ। सारे स्कूल्स को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि पीरियड स्टार्ट होने के पहले ये जानकारियां लड़कियों को दी जाए कि इस तरह के चेंजेस उनकी बॉडी में होंगे, इस तरह से पीरियड होगा, तो वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगी। जब वो, मैंने कई सारे सेशंस कई सारे गर्ल्स के साथ में लिए हैं, 1-2% होती हैं जिनको पता होता है कि हमको पहले से पता है, या तो उनकी मम्मियों ने बताया या हाँ। उनकी बड़ी सिस्टर्स अगर है तो बताया, लेकिन अगर वो खुद बड़ी हैं तो कई बार उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती इस बारे में, और वो उस चीज को, उनके लिए बहुत मन में डर बैठ जाता है उस चीज को लेकर के। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 30 जनवरी को एक ऑर्डर करा है, और हाँ, मेंस्ट्रुएशन को, पीरियड्स को ह्यूमन राइट में इंक्लूड किया गया है। इसमें 5 चीजें हैं कि हर जने को पहले से पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या है, बॉडी पार्ट्स क्या है, पीरियड्स क्या होते हैं, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, आपको सारी जगह सैनिटरी नैपकिन स्कूल में या आपकी वर्क प्लेस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपलब्ध होना चाहिए, वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए ताकि आप उसको आराम से चेंज कर सकें, और एजुकेशन देना है ताकि वो एक स्टिग्मा का विषय ना रहे, वहां के जो लोग हैं उसको उसको नॉर्मल तरीके से लें, क्योंकि ये तो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसको हम छुपाएं।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि सारी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, सभी जगह जब लड़कियों को इसकी शिक्षा दी जाएगी, उनके लिए फ्री सैनिटेशन की व्यवस्था की जाएगी, तो ये बड़ी एक सहज बात हो जाएगी और लड़कियों को भी परेशानी नहीं होगी। तो आप देखिए, आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ ये सारी व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, जहाँ से लड़कियों को, महिलाओं को बहुत समस्या आ जाती है, पीरियड के दौरान सफाई न रखना, या पीरियड के दौरान किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बताइए। क्यों गांव में महिलाएं एक ही कपड़े का यूज करती हैं, अभी भी कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, वो कपड़ा गंदा है या धुला है या नहीं धुला है, बार बार यूज हो जाता है, तो इन चीजों से कैसे बचा जाए?
2: ये देखिए, ये आपने बहुत सही बोला, ये बिल्कुल सही बोला। आज की डेट में भी पीरियड पॉवर्टी जिसको कहते हैं, बहुत सारी महिलाओं को जो है ये प्रोडक्ट्स जो है पीरियड्स के लिए ये उपलब्ध नहीं होते हैं। बहुत सारे हमारे टैबूज भी होते हैं जो कहते हैं नहाना नहीं है, मंदिरों में नहीं जाना है,
1: खाना नहीं बनाना है,
2: कट ऑफ कर दिया जाता है। तो पीरियड के लिए आपको रोज नहाना है, आपको सफाई रखना बहुत जरूरी है। जो कई बार क्या होता है, पीरियड के जो पैड्स होते हैं वो पीरियड का ब्लड गंदा नहीं होता। अभी मैंने बताया ना कि पीरियड का जो ब्लड है वो एक बच्चा वहां रुक सकता है, वो बच्चेदानी उसके लिए तैयार करती है, तो वो तो शरीर का सबसे पौष्टिक ब्लड होता है। वो गंदा तब होता है बाहर आके, जब वो हमारे शरीर का पसीना वगैरह उसमें मिलता है, बॉडी के टिश्यूज वगैरह मिलते हैं तब। तो कोई सा भी दिन हो, आपको 4-6 घंटे में पैड्स चेंज करना ही है,
1: 4-6 घंटे में।
2: और आपने आपको सफाई रखना है, रोज नहाना है, आप सिंपल पानी से भी धो सकते हैं, कोई बहुत फैंसी और चीजों की जरूरत नहीं होती है, वेजाइनल वॉश या किसी चीज, आप सिंपल पानी से आप धो सकते हैं। अपने आप को क्लीन रखें, डाइट अच्छी रखें, आयरन रिच फूड्स खाएं जिसमें लोह तत्व होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से ब्लड जा रहा है तो आपको आयरन की कमी ना हो। लिक्विड्स बहुत अच्छे से, पानी वगैरह काफी लें। ये जो अपने पेन किलर्स होते हैं, कुछ योगा होती हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, बहुत जरूरी है आपको।
1: कि लड़कियां योग और प्राणायाम के साथ साथ अगर कोई अभ्यास करें, शारीरिक एक्सरसाइज करें, तो क्या इस दौरान किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, ये बिल्कुल मिथ है कि इस टाइम आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। आप बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, पर आप नॉर्मल लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। साइकिलिंग है, नॉर्मल वॉकिंग है, कुछ योगा के पोजेस भी होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, कैट वॉक है, कैट्स पोज है, चाइल्ड पोज है, ये सारे पोज जो होते हैं ये सारे पीरियड का जो पेन होता है उसमें रिलीफ करते हैं। आप उल्टा लाइट एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो अपने आप नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं।
1: बटरफ्लाई जैसी कुछ एक्सरसाइज होती है, इससे क्या रक्त स्त्राव में वृद्धि तो नहीं हो जाती है?
2: थोड़ा सा होता है
1: जी,
2: होता है, दे है, ये सब मदद करते हैं पीरियड पेन्स में,
1: सुगमता के लिए, आसानी के लिए,
2: आसानी के लिए।
1: तो जैसा कि अभी आप श्रोताओं सुन रहे हैं, एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है कि महिलाओं में आने वाले पीरियड्स और क्या क्या सावधानी रखनी है। साथ ही डॉक्टर साहिबा जो बता रही हैं कि खान पान लड़कियों का, महिलाओं का, पौष्टिक रहना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स की मात्रा हो, उसमें आयरन भी हो, यानी संतुलित आहार होना चाहिए।
2: संतुलित आहार होना चाहिए।
1: इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पीरियड एक बहुत ही सामान्य विषय है, सामान्य रूप से इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए, लड़का लड़की सब एक समान रूप से हों, और ऐसे ही अगर हम एक माहौल ऐसा तैयार करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं लगता मैम कि कहीं किसी भी प्रकार की पीरियड्स को लेकर संकोच या छुपा छुपी जैसी कोई बात होगी, और जब ये बातें नहीं होंगी तो ये एक सहज रूप से आया जाएगा।
2: बिल्कुल, ये घरों में हमें अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा। ज्यादातर क्या होता है, घरों में भी आप देखिए अगर कुछ इस तरह की बात होनी हो तो मम्मी और बच्ची अलग हो जाएंगी, पापा को अलग कर दिया जाएगा, भाइयों को सामने कोई बात नहीं होगी, तो हमें घर से ही ये चीजें शुरू पड़ेंगी ताकि भाइयों को भी इंक्लूड करें उसमें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: स्कूल्स में भी जब ये सेशंस लें तो बॉयज को भी, जब उनको जानकारी ही नहीं होगी
1: तो
2: कि क्या चीज है, तो वो कैसे अपनी बहनों की या अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उनको मदद कर पाएंगे।
1: अच्छा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है, वो है सैनिटरी पैड्स का या कपड़ों का निस्तारण अच्छी तरह से कैसे किया जाए।
2: जी बिल्कुल, देखिए आजकल ज्यादातर जो हम लोग पैड्स यूज करते हैं वो होते हैं डिस्पोजेबल वाले।
1: बिल्कुल।
2: तो उनको निस्तारण के लिए क्या होता है, वो प्लास्टिक होते हैं यूजुअली, और उसमें केमिकल्स होते हैं। उनको जब हम देते हैं तो बहुत सारी जगहों पे रेड डॉट करके वो बनाया है कि आप इनके रेड डॉट लगाकर उसको जो है निस्तारण करिए, ताकि वो बाकी, क्योंकि अभी तक जो पैड्स हैं उसको हम ये नहीं कर पाए हैं कि ये कौन से वेस्ट में जाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: ये घर के वेस्ट में जाएगा या ये हॉस्पिटल में जाएगा।
1: हाँ।
2: क्योंकि लेकिन इसमें है तो ह्यूमन ब्लड।
1: हाँ।
2: और ये घर से जाता है तो ये हॉस्पिटल वेस्ट में जा नहीं सकता, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि आप उस पर रेड मार्क लगा दें, ताकि जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको पता होगा कि ये पैड्स हैं। दूसरा, अभी हम लोगों का बहुत ज्यादा ये पूरे जो प्लास्टिक के पैड्स होते हैं इसमें कई बार केमिकल्स होते हैं, आप लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक इनको इस्तेमाल करते हैं तो कई बार कैंसर होने का भी डर रहता है। इसमें जो केमिकल्स होते हैं डायऑक्सिन्स और बहुत सारे, उनसे क्या होता है कई बार वो वजाइना से एब्जॉर्ब होते हैं और उनमें केमिकल डिस्ट्रप्टिंग होती है प्रॉपर्टीज, आपके हार्मोन्स एंडोक्राइन्स को, वो हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं वो केमिकल्स, तो पीरियड्स भी कई बार उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। कपड़े इस्तेमाल करें लेकिन उसको पहले भी वॉश करें, उनको बाद में भी वॉश करें और धूप में सुखाएं।
1: अच्छा,
2: क्योंकि
1: अच्छा।
2: जो धूप की किरणें होती हैं वो
1: बैक्टीरिया
2: को वो मारती हैं और वो अपने आप ही उसको मारती हैं, संक्रमण को कम करती हैं, तो वो धूप में सुखाना, आप बिलीव नहीं करोगे कई लोग जो हैं वो कोई भी अपने इस तरह के कपड़े धूप में सुखाते नहीं, उनको शर्म आती
1: है,
2: वो गीले गीले जब पहनते हैं उससे उनको इन्फेक्शन होता है। और आजकल जो है सस्टेनेबल पीरियड प्रोडक्ट्स पर जोर दिया जा रहा है, जैसे मेंस्ट्रुअल कप्स हैं और रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं। तो ये रीयूजेबल क्लॉथ पैड हैं जिनको आप वॉश करके रीयूज कर सकते हैं, ये मार्केट में है, मार्केट में अवेलेबल है बिल्कुल। और ये आपका, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक जो है वो 500 से 800 साल लेता है डिकम्पोज होने
1: बिल्कुल,
2: में
1: बिल्कुल,
2: अगर
1: बिल्कुल।
2: आप उसको जलाते हैं तो हानिकारक जो प्रदूषण होता है वो एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है, आप जमीन में गाड़ते हैं तो प्लास्टिक आप इतना इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप जब कॉटन के रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स यूज करेंगे उनको आप 6-8 घंटे में बदलिए, उनको आप वॉश करके सन ड्राई करिए, धूप में सुखाइए, एक वो हो गया, तो एक जो पैड आपकी किट होगी वो 2 से 2.5 साल चलेगी।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो आप देखिए आपने आपकी पैसों की

0: भी बचत होगी, एक बार आप खरीदोगे अगर उनको तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसे भी होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छे होंगे और प्लस वो वातावरण के लिए भी अच्छे होंगे। तो हम एक बार में तीन जगह पर उसके फायदे ले रहे हैं। और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप की बात करते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है कि यूज करने में लोग डरते हैं, कठिनाई है, लेकिन एक बार आप सीख गए तो उसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: आपको बाहर कुछ पता ही नहीं चलेगा कि पीरियड्स हैं। और सिलिकॉन के होते हैं, उसमें कोई रिएक्शन वगैरह रीयूज होते हैं सिलिकॉन। हाँ। मतलब जिससे
1: अच्छा, उसका भी इस्तेमाल कितने बार किया जा सकता है?
0: वो तो 6 से 10 साल चलते हैं। एक मेंस्ट्रुअल कप की लाइफ 6 से 10 साल है। और हद से हद महंगा से महंगा, सबसे अच्छा भी अगर आएगा तो 350-400 रुपए का आएगा।
1: अपने शरीर की सफाई के ऊपर कैसे ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अगर हम अपने शरीर की सफाई कर लेते हैं, अच्छे से स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो उन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इनसे होती हैं और कैसे अपने शरीर की स्वच्छता पर ध्यान दिया जा सकता है?
0: देखिए, जब आपको आप पीरियड्स के टाइम पे वॉश कर रहे हैं तो पहली चीज जो है, जब आप जैसे टॉयलेट वगैरह वॉश करते हैं तो आपको जो अपनी हैबिट क्या होती है पीछे से आगे आने की, तो जो हम जब पॉटी वगैरह वॉश करते हैं तो हमारे हाथ पीछे से आगे आते हैं, हम वो इन्फेक्शन आगे यूरिन की जगह ला रहे हैं। तो हमको क्या है, वॉश हाथ को आगे से पीछे ले जाके वॉश करना है तो यूरिन इन्फेक्शंस कम होंगे। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, पानी ज्यादा पीजिए, उससे भी यूरिन इन्फेक्शंस कम होंगे। अगर आप पैड्स को 6 से 8 घंटे में चेंज करेंगे तो उसके ऊपर जो इन्फेक्शन ग्रो करने लगता है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शंस आपको होते हैं तो आगे जाकर के ये आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब करते हैं, आपको इन्फेक्शन ट्यूब्स डैमेज कर देते हैं, तो आपको इनफर्टिलिटी, बांझपन की भी शिकायत आगे हो सकती है।
1: इतनी बड़ी समस्या भी
0: बन सकती है अगर आप उसको पीरियड्स को अगर आप अच्छे से हाइजीन और स्वच्छता नहीं मेंटेन कर रहे हैं।
1: जी, संदेश देना चाहते हो तो जरूर बताएं।
0: बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगी कि पीरियड्स को आप बिल्कुल एक बोझ की तरह ना लें, क्योंकि पीरियड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं से फीमेल की आइडेंटिटी है, उन्हीं के कारण हम लोग गर्भवती हो सकते हैं। और वो जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो ही हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए वो सुंदरता प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है?
0: इसलिए हमारी बोन्स को अच्छा रखते हैं, क्योंकि जिनके पीरियड्स चले जाते हैं उनकी बोन्स वीक होती हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस चीज को आप लोग कभी ये ना सोचें कि ये क्या है,
1: अभिशाप ना मान के
0: वरदान माने। ये हम महिलाओं को ही होते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीजें जिसको हमें थैंक यू कहना चाहिए गॉड को कि ये हमारे लिए।
1: हमें लगता है श्रोताओं, आज की इस बातचीत से आप लाभ जरूर उठाएंगे। और डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो आई और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: और अब अगला प्रसारण दिल्ली से होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी। और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध

0: ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरामैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चिराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम

0: तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
1: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहला गाना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म नूरी से। जानिसार अख्तर के बोल हैं, धुन बनाई है खय्याम ने।

नूरी फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, जिसकी धुन तैयार की थी खयाम ने, जानिसार अख्तर ने ये गीत लिखा था, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजे थे बटिंडा रोड मंडी डववाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। और एक और संदेश हमें मिला था छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोटके वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके का। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। गुमला झारखंड से संदेश मिला था इसी गीत के लिए एस एम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल होदा का। एक और ये संदेश हमें मिला था कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, ममता अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने संदेश भेजा पद्मपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और अब अगला गीत जो हम आपकी नजर करने जा रहे हैं उसको सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता। मजनू का टिल्ला से कमल वालूजा, मधु वालूजा, सागर वालूजा और सतना मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजते हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल। मालटेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे और श्रद्धा ढेकरे। कोजागिरी कॉलोनी कोपर गांव से सुरेश माड़ोदे, वर्षा माड़ोदे, श्रद्धा माड़ोदे और मानसी माड़ोदे। एक और ये संदेश हमें भेजा है दतरेंगी से भागवत वर्मा, रुद्र वर्मा,

शांति देवी, लीलावती और विनीता। परभणी महाराष्ट्र से लिखते हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और इनका पूरा परिवार। ग्राम बेहरामपुर टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज, आर्यन, आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है परवरिश फिल्म का गाना, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार और इनके साथियों ने। तो आइए सुनते हैं गीत, मजरूह का लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और शैलेंद्र की आवाज़ों में परवरिश फिल्म का ये गाना भी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब अगला गाना, फिल्म का नाम है डर। आवाज़ें लता मंगेशकर और उदित नारायण की हैं। शिवहरि का संगीत है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

डर फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था, धुन तैयार की थी शिव हरी ने, और इस गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा था हमारे इन सभी श्रोताओं ने। गांव बटाघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, करणवीर हाउस भुचो कैचिया बटिंडा, यहां से संदेश भेजने वाले हैं परेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। सेक्टर 8 भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर। गांव चोहल्दा बागपत से संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से लिखते हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और अब अगला गीत जो सुनना चाहते हैं हमारे सभी श्रोता, इन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजा है, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के ग्राम मामना से सोहन सिंह राजपूत का संदेश हमें मिला है। और इसी के साथ मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन।

0: जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवयम जैन और आदि जैन। और एक ये हमें संदेश मिला है, लिखने वाले हैं जिला खरगोन सनावत से, मध्य प्रदेश से, अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, और आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा। और एक और ये संदेश हमें भेजा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से संदेश भेजा है वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर ने। ग्राम लसुड़िया, पता तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद, और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिखते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही और मेहरा जहां। पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। तो आप सभी की पसंद पर हम सुनते हैं दस्तक फिल्म का गाना, आवाज उदित नारायण की है, जावेद अख्तर ने गीत लिखा है और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।
1: मुझे

उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अगला प्रसारण मुंबई से होगा बस कुछ ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक

लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए। इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया। पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी

एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद।

छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

इंतजार भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

दिल ने जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसाना है, हकीकत है। दो घड़ी मिल बैठें, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

विद्यार्थी से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आरती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबुए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नजारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।

ये कश्मकश, ये उलझने बहुत मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है। दिल का मामला है, हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा जहां भी साथ निकलेगी, अगर ये दिल से निकलेगा।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही

1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।